FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

समुस्वरों में देश वंदन के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। प्रस्तुत है राजेश डेविड के स्वर में ये भजन।

राजेश डेविड को अभी आपने सुना। आराधना की अगली प्रस्तुति में आइए श्रोताओं सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये भक्ति रचना।

देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। कार्यक्रम के समापन में समूह स्वर में सुनते हैं सूरदास भजन।

0: समो स्वरों में इस तुलसी भजन के साथ ही हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है भिंडी के खेती। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का है।
1: किसान भाई हो, जय जोहार, राम राम। तो संगवारी हो, देखो अमटहा साग सब्जी खाए के मन लगत है जी, और आप मन पहुंचाबे नहीं करो। तो हमन आप मन तक पहुंचाथन सुघर जानकारी ला रमकेरिया के उन्नत खेती के बारे में, जेला हमन तेल परहा भुंजिया बना के और अमटहा खाए में उपयोग करथन। संगवारी हो, भिंडी ला हमन लेडी फिंगर के नाव ले घलो जानथन, जौन हर हरियर कोमल और पौष्टिक फल माने जाते। एला हमन सुखा फर और छिलका ला कागज उद्योग में और रेसा निकाले में घलो उपयोग करते। रमकेरिया के बात करें हन तो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और दूसर खनिज तत्व आनी बानी के में पाए जाते, जौन हर हमर शरीर पर अब बड़े सुघर माने जाते। कर हमन खेती करत हन ना तो कर फायदा हर जेमा आप मन लचेत रखना है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता रहे, ऐसे जलवायु हर एकर बर सुघर होते। माटी के घलाव चे

0: रखे बर पड़थे। कई प्रकार के माटी म हमन रमकेरिया ला लगाथन तभो ले हर हो जाथे। फिर चेत रखे बर पड़ही बलोई दोमट माटी है कि चिकनी माटी है, तिहा एकर खेती हर एकर फसल जौन है तेन हर ज्यादा मिलथे। उचित पानी निकासी के व्यवस्था रहे तो बने रहते और माटी के पीएच मान हर 6 ले 6.5 हवे ना तो वाव अच्छा रही। संगवारी हो रमकेरिया लगाए बर सोचे हन तो सोचे बर पड़थे के एकर किसम जौन है तेन हर बढ़िया रहे, जेमा पंजाब 7, पंजाब 8, परभनी क्रांति, पूसा सावनी, अर्का अनामिका, अतना सुघर सुघर किसम आते जेला लगा के हमन फायदा ला ले सकत हन। संगवारी हो भिंडी लगाथन तो चेत रखे बर पड़ही भुइया की तैयारी ला बढ़िया करीन। 3 ले 4 पैत जोताई करके ओज बूता अपनाना है बढ़िया बरोबर कर लेन। ज्यादा ढेला पखरा मत रहे, गोंटी मत रहे, जरई हर जाही रमकेरिया के तो ढेला पखरा रही तो उमा व्यवधान पहुंच जाए तो एकर बर बरोबर रखे जाते। होकर बाद आखिरी जोताई हो गे तहां संगी हो 100 कुंटल सरहा गलहा गोबर के खातू ला प्रति एकड़ की दर ले हमन देवथन खेत म तो बने रही। बीजा बोए के 1.5 ले 2 सेंटीमीटर की गहिला तक सीधा सीड्रिल है, हैंड डिबलिंग है, चाहे नांगर के पाछू हमन बोवाई करथन तो बने रही। बोवाई करे के बेरा हर तो अभी के बेरा हर सुघर हवय, जेमा 45 सेंटीमीटर और पौधा के बीच के दूरिया ला 15 ले 20 सेंटीमीटर रखे के सलाह देहे जाते। बीजा जौन है तेला 1 ले 2 सेंटीमीटर के गहिला में लगाथन तो बने रही। संगवारी हो अभी के बेरा में 4 ले 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले बीजा के आवश्यकता हर होते। शाखा वाला जौन किस्म है तो 60 गुणित 30 सेंटीमीटर के और बिना शाखा वाला किस्म है तो 45 गुणित 30 सेंटीमीटर के दूरिया रख के खेती किसानी के काम बूता में हमन भिंडी के फसल ला लगा सकत हन। बीजा जौन है ओला 1 दिन बर यानी 24 घंटा जी तो ओला पानी में भिगो के रखत हन ना तो अंकुरण हर बढ़िया बाढ़े लगते। कार्बेंडा जिम ले आप मन उपचारित कर ले हा तो माटी जनित बीमारी हर नहीं होवे, बढ़िया सुरक्षा रहते हमर फसल और बीजा की। एकर बर बीजा ला 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडा जिम के घोल में 6 घंटा तक बढ़िया भिगो के रख देवा और छाव में सुखो लेवाओ तो तुरते बोवाई हमन कर सकत हन। बेहतर अंकुरण और माटी जनित बीमारी ले फसल के रक्षा बर बीजा ला 5 मिलीलीटर प्रति 1 किलोग्राम बीजा के दर ले इमिडाइक्लोप्रिड ले उपचारित करथन और ओकर बाद 4 ग्राम प्रति किलो बीजा के दर ले ट्राइकोडर्मा बिराइड ले उपचारित करथन ना तह झन पुछिया फिर रमकेरिया हर बढ़िया उपज देही। आप मन चेत रखियो ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेना जरूरी होते। एकरे संग अही कहबो जैसे संगवारी तय लेहे देहे वैसे झोंक आशीष जी, अन्न धन से तुहर घर भराय और जुग जियो लाख बरिस जी। राम राम।
1: भिंडी के खेती इस विषय पर यह थी जानकारी, वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आई श्रोताओं अब सुनते हैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, सुधा मल्होत्रा और साथी संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि

तहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: तुलसी कृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर, सुधा मल्होत्रा और साथी संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आयुश्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। विषय है न्याय का स्वरूप। वाचन स्वर संज्ञा टंडन का है।
1: न्याय का अर्थ दोस्ती या रिश्तेदारी निभाना नहीं हुआ करता। न्यायालय का स्थान शासक से भी ऊपर उठा हुआ माना जाता है। उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त कहा जाता है। उसका हृदय निरपराध व्यक्ति के लिए फूल के समान कोमल होता है, इसलिए अपराध मुक्त साबित होने पर अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके विपरीत न्यायाधीश का हृदय अपराधी व्यक्ति के लिए वज्र के समान कठोर होता है, इसीलिए अपराध सिद्ध होने पर वो आवश्यकता अनुसार अभियुक्त को फांसी की भी सजा देने में नहीं हिचकता। तब वो ये नहीं सोचता कि अपराधी के बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। सच्चे न्यायाधीश का चरित्र इतना अधिक सबल होता है कि उसके नैतिक साहस को न तो असामाजिक तत्व डिगा पाते हैं और न किसी की पहुंच और प्रभावों का उस पर असर पड़ पाता है।

0: उसे खरीदा नहीं जा सकता। न्यायाधीश के बारे में बात चलते समय कड़ी सजाओं की भी बात निश्चित रूप से उठा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि कड़ी सजा अमानवीय होती है, पर वे ये विचार नहीं करते कि जिसे कड़ी सजा दी जानी पड़ती है वो स्वयं किसी न किसी रूप में औरों के लिए कितना अधिक अमानवीय रहा होता है। साथ ही उसको दी जाने वाली सजा के उदाहरण के वस्तुतः सैकड़ों अन्य लोगों को अमानवीय बनने से रोका जा सकता है। जीप काट डालने की अमानवीय सजा सुनकर ही लाखों लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनकी जीप काट डालने की नौबत आ जाए। ये बात अमानवीय कहाँ हुई? समूचे शरीर के हित के लिए किसी सड़ते हुए अंग को काट डालना शायद ही किसी के द्वारा अमानवीय कहा जाएगा। बिच्छू को तो उसके दिखते ही अधिकतर लोग केवल भावी शंका से जिंदा नहीं छोड़ते। न्याय के साथ माफी का घनिष्ठ संबंध है। यदि कोई व्यक्ति माफी मांगता है तो इसका अर्थ ये है कि वो भूतकाल के लिए पश्चाताप भी करता है और भविष्य के लिए अपने में सुधार हेतु सन्नद्ध भी होता है। माफी स्वयं में दंड है, इसलिए यदि न्याय करने वाला व्यक्ति सच्ची माफी मांगने वाले को उसके अपराध की मात्रा और सीमा पर विचार करते हुए एक अवसर देता है तो उसके न्याय का पलड़ा डगमगाता हुआ नहीं कहा जाना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न्याय पाने के और इसी न्याय करने के अवसर आते हैं। उन अवसरों पर न्याय करने वाले की बुद्धि के स्तर की, उसकी इंसानियत की, उसके ईमान की और उसके चरित्र की पहचान हो जाती है। न्याय करते समय जो व्यक्ति पंच परमेश्वर वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है वो स्वार्थ और क्षुद्रता की सीमाओं में रह जाता है, जबकि ऐसे समय में अपने पराये को भूलकर निष्पक्ष फैसला देने वाले व्यक्ति सामान्य से उठकर महान की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी चमड़ी की नहीं अपनी आत्मा की आवाज सुनता है जो परमात्मा का अंश कही जाती है। यद्यपि ऐसे आदमी गिनती में बहुत कम हुआ करते हैं, पर यदि वे भी न हो तो हर तरफ स्वार्थांधता और जिसकी लाठी उसकी भैंस ही होकर रह जाए। अधिकतर मामलों में व्यक्ति विशेष का केवल गिने चुने लोगों के वर्ग में होना कोई गलत या आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर कम होते हैं, मरीज ज्यादा, इंजीनियर कम होते हैं, मजदूर ज्यादा, समाज सुधारक और संत महात्मा भी गिने चुने होते हैं, साधारण नागरिक और अनीति करने वाले प्राणी अनगिनत होते हैं। कभी कभी तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एकला चल के समान आपको बिल्कुल अकेला भी चलना पड़ सकता है। गरुण भेड़ों के समान नहीं, अकेले ही चलता है। आप यदि न्याय के नाम पर, आदर्श के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, चरित्र के नाम पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हो तो भी अपने को अकेला मत समझिए, क्योंकि इंसानियत आपके साथ है और धर्म आपके साथ है। यूं भी अंधकार दूर करने के लिए आरंभ में केवल एक दीपक की आवश्यकता होती है जो असंख्य दीपक जला सकता है। यदि आप में नैतिक साहस होगा तो बिल्कुल अकेले रह जाने पर भी आप में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होगी। आइजनहावर के अनुसार आप में अड़ने और लड़ने की तत्परता होगी।
1: न्याय का स्वरूप, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। वाचन स्वर संज्ञा टंडन का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आयु श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए दिन में 11 बजे। सुबह 8:30 पर रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। रायपुर से ही रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, समय होगा दिन में 10 बजे से। सदाबहार नगमे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर और नए तराने की बारी होगी 10:30 से। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे।

शाम 5 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम अमृत धारा हम लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। इसमें डॉक्टर विवेक दुबे से डॉक्टर सुप्रिया भारजन की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। समय होगा शाम 5:05। श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण होगा संध्या 6:35 पर। इसमें हम चर्चा करेंगे ममता की अमृत धारा विषय पर। क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति में अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ की बातें होंगी। इसमें पर्यावरणविद श्रीमती शुभदा जोगलेकर से अदिति शाह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की।

संध्या 7:30 पर रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। हम लेकर आएंगे शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। संसद समीक्षा सुनिए रात 8 बजे। इसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दिल्ली से ही अनुप्रसारित करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। समय होगा रात 10 बजे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत धारा सुनिए शाम 5:05 पर, और श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:35 पर। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नाम विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु त्रयोविंशतितम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानाम् अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्, तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 पराजितवान्। असौ 150,164,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीकाभाई रबारी इत्येनं 30,000+ पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000+ पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000+ राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णम् इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर

0: जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमेरिकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क ये आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: सूरज की किरणों ने दिया है ये पैगाम, हर सुबह लाता है जीवन में नया मुकाम। मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।

लिए यही है जीवन का सबसे सुंदर काम। बीती बातों को छोड़कर नई उम्मीदों और नए उत्साह के साथ स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी सुधीर श्रोताओं का। कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपके साथ हूं मैं महावीर बरगा। कीजिए स्वीकार हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और ये सच भी है। स्वस्थ रहने की चाहत सभी को रहती है और इसके लिए कई तरह के प्रयास भी लोग करते ही रहते हैं, जिसमें नियमित व्यायाम, योग, साइकिलिंग, तैरना, जिम, सुबह की सैर, दौड़ जैसे अभ्यास रहते हैं। इन सब के साथ साथ पौष्टिक खान पान, संतुलित आहार भी आवश्यक है, क्योंकि भोजन या खुराक न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमारे मानसिक सेहत को भी मजबूत बनाता है। खासकर नवजात शिशुओं की बात करें तो उनके लिए ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और हम सभी जानते हैं कि नवजात शिशुओं का सर्वोत्तम आहार होता है माँ का दूध। इसकी मान्यता वैश्विक स्तर पर है, और इसकी महत्ता को बताने के लिए ही हम विश्व स्तर पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नवजात शिशु के लिए मां का दूध ही संपूर्ण आहार होता है। दूध में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रम शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और ये शारीरिक और मानसिक विकास को सुदृढ़ करता है। यही नहीं मित्रों, स्तनपान से बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ माँ को भी ये स्वस्थ रखता है, यानी स्तनपान से माँ और शिशु दोनों को फायदा होता है। माँ के दूध में एक और तत्व प्राकृतिक रूप से बनता है, और वो है लैक्टोफॉर्मिन। ये बच्चे की आंत को एक तरह से लौह कवच की सुरक्षा देता है, जिसके कारण शिशु की आंत में रोगाणु पनप ही नहीं पाते हैं। भले ही वैश्विक स्तर पर जागरूकता के उद्देश्य से हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, लेकिन इसकी महत्ता गुणवत्ता सदियों से है और हमेशा हमेशा बने रहेगी। ये सिर्फ बच्चे की सेहत या भोजन की बात नहीं है, ये अनमोल बंधन को अटूट बनाता है, जिसमें माँ और बच्चे बंधे रहते हैं खुशी खुशी प्रसन्नता से।

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, इन दिनों प्रकृति नए रंगों में सजी हुई है। बहते झरने, भरे हुए ताल तलैया और हरियाली, ये सब सावन की मधुर बौछारों के कारण है। सावन केवल वर्षा या हरियाली का महीना ही नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। इन दिनों मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है और यही समय है जब हम पौधरोपण करें। तालाब के किनारे, स्कूल प्रांगण, खेत मेड़ या अन्य ऐसी जगह जो सुरक्षित हों और जहां पौधों को पनपने के अवसर भी मिले, इन सभी जगहों में हम फलदार, छायादार सहित कई तरह के पौधे लगा सकते हैं जो वृक्ष बन सके। मित्रों, सिर्फ पौधरोपण तक ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस नन्हे नाजुक पौधे का संरक्षण आवश्यक है। नियमित देखभाल भी जरूरी है, पशुओं से बचाना, धूप पानी की व्यवस्था भी आवश्यक है। जब एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर विशाल वृक्ष बनता है, तब वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य उपहार बन जाता है। नन्हा सा पौधा जब वृक्ष बन जाएगा, धरती का आंचल हरियाली से भर जाएगा। आज जो इसकी देखभाल करेंगे हम, कल यही जीवन का आधार बन जाएगा। श्रोता मित्रों, हमें समझना होगा कि प्रकृति से हमारा संबंध केवल लेने का नहीं है, बल्कि उसे बचाने और संवारने का भी है। यदि आज हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, तभी हमें और पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, पानी और सुंदर पर्यावरण मिल पाएगा।

आइए इस सावन में हम केवल वर्षा का आनंद ही न लें, बल्कि एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प भी लें। अवसर कोई भी हो, एक पेड़ हम जरूर लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। श्रोताओं, शासकीय विभागों के प्रयासों के साथ साथ बहुत से सामाजिक संगठन समूह भी इन दिनों ये सराहनीय काम कर रहे हैं। यदि चाहें तो उन कार्यक्रमों में शामिल होकर हरियाली बिखराने में योगदान दे सकते हैं, या फिर स्वयं या परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ या मोहल्ले कॉलोनी वासियों के संग हम ये साझा प्रयास कर सकते हैं। श्रोताओं, वृक्षों की महत्ता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसकी शुरुआत पौधरोपण से ही होती है। इस दिशा में हम अपने स्तर पर क्या सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, अवश्य विचार कीजिए और सटीक प्रयास भी।

0: गीत के बाद श्रोताओं आइए अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
1: नमस्कार, उमाशंकर पांडे का। लीजिए, प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशाओं की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चले तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़े। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं, इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती ना करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में, अतः आप सभी से अनुरोध है

0: इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। और अब बारी है कुछ संदेशों की।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन।
2: 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत धारा आप सुन सकते हैं आज शाम 5:05 पर। इसमें डॉक्टर विवेक दुबे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। समय होगा आज शाम 5:05 पर। शाम 5:35 पर पर्यावरणविद श्रीमती शुभदा जोगलेकर से अदिति शाह की बातचीत भी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम महिला सभा में। और इन सूचनाओं और संदेशों के साथ घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम के इस अंक से दे अनुमति अपने साथी महावीर बरगाह को। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी की रचना से। आर डी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है और फिल्म है शोले।

0: दो तीन हो जाती है।
1: फिल्म शोले का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं राजेंद्र किशन की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म है ज्वार भाटा।

ज्वारभाटा फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र किशन की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में जावेद अख्तर का लिखा हुआ यह गीत। AR रहमान का संगीत है, कुमार शानू की आवाज़ है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे श्रोताओं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। आइए आप सुनते हैं SH बिहारी की यह रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं और फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

0: मर्यादा। श्रोताओं, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आई श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म आरजू से लिया हुआ ये गीत। कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना और अनु मलिक का संगीत।

आरजू, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। आनंद बख्शी की रचना थी और अनु मलिक का संगीत। इसी के साथ ही सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचारों के लिए कुछ ही पलों में जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और

0: रेल सर्विस के दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं।

0: हैं भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. Seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not

बाल साहित्य के आधार में हमन नवा पीढ़ी के निर्माण करथन अतकेच नो है, बाल साहित्य और अवैया दिन के संभावना ला घलो देखथन। सच में बाल साहित्य लयिका मन के मति और भावना के विकास बर लिखे जाते, एमा संवेदना होते और एहा लयिका मन ला जीवन मूल्य के पहचान करवाते, एहा उन मन में कल्पना शक्ति और सामाजिक चेतना के बीज बोते। बाल साहित्य लयिका मन की रुचि और स्थल ला ध्यान में रख के लिखे जाते, जेमा अचरज बाल परिकल्पना और जिज्ञासा होते, खेल तमाशा के नजरिया ले हंसी ठट्ठा घलो जरूरी माने जाते। ए नजर ले बाल साहित्य लयिका मन के समय विकास एक सबल माध्यम है। अंग्रेजी साहित्य के नामी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ हा लिखे है, लयिका हा मनखे मन के ददा होते, मतलब लयिका मा मनखे के जम्मो गुण समाये रही थे, जौन समय और उम्र के संग धीरे धीरे बाढ़ते और उभरते। बाल साहित्य लिखना एक कठिन काम आए, बाल सखा के पहली संपादक लल्ली प्रसाद पांडे जी कहे थे, बाल साहित्य वही लिख सकते हैं जोन अपन आप ला लयिका असन बना लेते। बड़े होके लयिका बनना मुश्किल है और ओकर ले घलो ज्यादा मुश्किल है लयिका बन के ओमन पर लिखना। यही पाए के जोन लयिका मन पर लिखते ओमन एक पवित्र काम करते, उन मन के काम कोनो तपस्या ले कम नहीं होए। हम मन छत्तीसगढ़ी भाखा के बाल साहित्य के उपजे और बाढ़े के गोट करन, तब लिखित बाल साहित्य के पहली हम मनला मुँह अखरा परंपरा के बाल साहित्य पर विचार करना चाहिए। तथ्यात्मक ढंग ले देखें पारंपरिक बाल साहित्य के विकट समृद्ध इतिहास रही, कहुनों के भाखा के साहित्य के उपज और विकास पक्का लोक साहित्य ले हो है, और ये पारंपरिक साहित्य आज घलो अतकेच प्रासंगिक है जतका कि आज के लिखित साहित्य। सच में छत्तीसगढ़ बाल साहित्य के उपजे और बाढ़े के आधार में शिशु गीत, लोरी, खेल गीत और लोक कथा मल्ल मानता हूँ। छत्तीसगढ़ी के लोक कथा माँ बहुला गाय, चल रे तुमा बाटे बाट, सातो नान्हे नान्हे मनखे जैसे ला तैसे, महादेव के भाई सहादेव, जैसन कतको लोक कथा हवें जौन आज घलोक लोक मचलत है और लयिका मनला अपन को दिखेस थे। यही रीति ले लोरी गीत घलो चलत है, चंदा मामा आ जाबे, दूध भात ते ले आबे, बाबू खाही गुप गुप, पानी पीही सुप सुप। यही रीति ले खेल गीत छत्तीसगढ़ में बहुत गाए जाते और सबसे प्रसिद्ध गीत है अटकन मटकन दही चटाका, लोहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबुन। मौखिक बाल साहित्य के कतको उदाहरण लोक में प्रचलित है, हमन छत्तीसगढ़ ही लिखित बाल साहित्य के लेखन में चर्चा करबुन तब एकर विकास द्विवेदी युग ले माने जा सकते। ये युग के रचनाकार पंडित सुखलाल पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, प्यारे लाल गुप्त, पदुमलाल बख्शी, जगन्नाथ भानु एमन प्रमुख हावे। बाल साहित्य के रूप में सुखलाल प्रसाद पांडे के लिखे बाल पद्म पीयूष, बाल शिक्षण पहली और छत्तीसगढ़ ही गीत ऐसने किताब आज हमर बीच में हावे। एकर छोड़ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के रचे बाल साहित्य घलो हम मल्ल देखे बे मिलते। छत्तीसगढ़ी भाखा में रचे बाल साहित्य लयिका मनला अपन संस्कृति भूइया के महक और लोक परंपरा मन ले सोझे जोड़ते। महतारी भाखा और बाल साहित्य गीत के बीच में अनूठा नाता है थे, जोन लयिका मन के मानसिक और बौद्धिक विकास में अपन बड़े भूमिका निभाते। कोनो भी विषय के समझ महतारी भाखा में सबले सहज और तुरते होते। महात्मा गांधी घलो ये दृढ़ विचार रहीस कि लयिका मन के प्राथमिक और बुनियादी सीखे के माध्यम सिर्फ ओकर मन के महतारी भाखा होना चाहिए। ओमन महतारी भाखा ला बुद्धि के विकास, सांस्कृतिक पहचान और विचार बर सबले सहज आधार मानिन। राष्ट्रीय पाठचर्या 2007 के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाखा ला जोड़े के पहली आंचलिक भाखा मन ला बढ़ावा मिलिस, जेकर ले छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य के मांग बढ़ीस और लिखे के नवा नवा रद्दा घलो आगू आईस। हमन जानथन कि बाल साहित्य समाज में

0: एक सुघर संदेश बगरा थे। साहित्य सिर्फ कपोल कल्पित नो है, ओमा जिंदगी के सत घलो छिपे रहते। आज लइका मन के संसार घलो उत्केच अनमोल है जतका बड़े मन के। ये जम्मो गोठला ध्यान में रख के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मा महतारी भाखा में पढ़ाई लिखाई ऊपर विशेष जोर दे गए। ये संदर्भ में घलो आंचलिक बाल साहित्य के महत्ता और ज्यादा बढ़ जाते। आज बाल साहित्य सिर्फ कविता और कहानी तक सीमित नहीं है, समय के बदलाव के संग संग बाल मन के हिसाब से एक विषय में घलो फेरबदल आए है। तभी छत्तीसगढ़ी भाखा के नवा पीढ़ी के रचनाकार सिर्फ कविता मन तक सीमित नहीं रही गए, ये मन आगे जनौला पहेली सुरता जरा संस्मरण कैथन और बाल नाटक घलो लिखत हावे। आज के बाल साहित्य है वैज्ञानिक विषय में घलो लिखे जाते। आप देखे हो कि मैं कंप्यूटर के भी बात करे जाते। आज के बाल साहित्य लइका मन ला खाली उपदेश नहीं देवे, भलुक ओ मन ला सोचे और सवाल करे के बर भर प्रेरित करते। बादर मा कहाँ ले आते पानी, अतका अतका पानी, बिजली कैसे चमक थे, काहे एकर कहानी। ये यदि लइका कथे तो कर मन में प्रश्न होते। बाल साहित्य असल में लइका मन के मन में सहज अभ्यक्ति आए, उन मन अपन मन के बात ला अपन दाई ददा ले सोझे कही थे। अम्मा ते भैया ला कही दे, मोला झन बिजरावे, उल्टा पुल्टा गीत सुना के कभू झन चिढ़ावे। आज के लइका साहित्य मन मा पर्यावरण ला बचाए के चिंता घलो करते। आवो भैया पेड़ लगाबुन, पर्यावरण ला स्वच्छ बनाबुन, चारों खुट हो ही हरियाली, धरती ला सड़क बनाबुन। आज के लइका मन बड़ा आकांक्षी है, उनकर मन की आकांक्षा बहुत आगे बढ़ गए है। ओमन अपन निर्माण भर भर भर सपना देखते। बन पायलट मैं जिहाज ला ऊंचा गजब उड़ाहूँ और अपन देश के रक्षा करके देश के मान बढ़ाऊँ। सचमा बाल साहित्य लइका मन के सपना और जिज्ञासा ला आखर माँ पिरोय के कला आए। वह फोकट के सीख नहीं देवे, ओ मन के आगू चुनौती घलो रही थे, विज्ञान के बाद घलो करते। कंप्यूटर हर ज्ञान बढ़ाते, रद्दा घलो नमा दिखाते, झटपट प्रश्न के करते हल, कहते सबले आगू चल। आज नवा पीढ़ी के रचनाकार मन सोझे रूप से बाल साहित्य रचे के उद्यम करत हैं और उनकर रचना सरलक प्रकाशन में आवत है। एकर छोड़ गुरतुर गोठ ऐसन ऑनलाइन पत्रिका मन और डिजिटल माध्यम ले छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य ला देश विदेश मा बसे छत्तीसगढ़ी भाषी लइका मन और पाठक मन तक पहुँचाना सुलभ हो गए है। ये भांति ले धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य देश और विदेश में अपन अलग चिन्ह बनावा थे। आज मैं पूरा विश्वास के संग कह सकत हूँ कि छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य के अवैया काल भारी सुगर और स्वर्णिम हुई।
1: छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य के दशा और दिशा ये विषय में वार्ता देत रहिन छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर बलदाव राम साहू। अब आवा कार्यक्रम में आगे बढ़ा थावन और आप मन ल सुनवा थावन एक कहानी जेकर शीर्षक है जैसे करबे तैसे भरबे। अब ये कहानी सुनात हैं श्रीमती राधिका पटेल।
2: एक गाँव में केसव नाव के एक लकड़हारा रही थे, ओखर पास में मात्र एक कुल्हाड़ी एक बैला और एक उटरी थे। एक दिन केशव अपन कमजोर बैला के पीठ में लकड़ी के गठ्ठा ला लाद दे थे और अपन बेटी सीता ला कही थे, बेटी मैं बाजार जाता हूँ। बाजार में पहुँचे के बाद एक जगह खड़ा होके जोर जोर से चिल्ला थे, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। बहुत बेरा के बाद एक जमींदार की नज़र केशव लकड़हारा ऊपर पड़ थे। जमींदार है केशव ला जाके पूछते, ये सब्बो लकड़ी ला बेचना है का? केशव खुश होके कही थे, हाँ मालिक सब्बो ला बेचना है। फिर मालिक कीमत काय देबे? जमींदार है केशव ला कही थे, तोर सामान है तही बता काय दाम लेबे तेला। केशव कही थे, तू चांदी के सिक्का लूँ मालिक? जमींदार कही थे, चल ठीक है, जैन हालत में लकड़ी है वही हालत में मोर पाछी पछुआ कहके दू ठन चांदी के सिक्का ला जमींदार है केशव ला दे देते। कुछ देर में जमींदार है अपन घर में ले जाते और जमींदार है केशव ला कही थे, लकड़ी ला छोड़ दे तय अपन घर जा। केशव हाँ मालिक कहके

पैला की पीठ ले लकड़ी ला उतारे ला लागिस। त अतकेच म जमींदार आ केशव ल कहिथे, त काय करत हस? केशव कहिथे, मालिक मैं बैला के पीठ ले लकड़ी ला उतारत हूँ। जमींदार गांव वाला मन ला सकेल लिस और केशव ल कहिथे, मैं दू चांदी के सिक्का म बैला समेत लकड़ी के तोर मोर बात होय रहीस। केशव ह जमींदार ल कहिथे, ऐसे जुलुम मत कर मालिक। चलाक जमींदार ह घमंड से कहिथे, का मैं झूठ बोलत हूँ? जुबान के अनुसार लकड़ी और बैला ह मोर हो गे और एखर कीमत तोला मैं दे चुके हूँ। सब गांव वाला मन के सामने म केशव ल कहिथे, देख लो गांव वालो, ये अपन जुबान ले मुकरा थे, चोरी और सिनाजोरी करा थे, का एला माफ करे के लायक है? गांव वाला मन जमींदार ल कहिथे, नहीं नहीं, ये लकड़हारा माफ करे के लायक नहीं है। जमींदार हा गांव वाले मन ल पूछते, ये लकड़हारा ला काय सजा दिए जाए? कोनो कोनो कहिथे, एला सरपंच के पास ले चलो। तहाले सब झन के राय ले केशव ल सरपंच के पास ले गिस, जेन हा जमींदार के परम मित्र रहिथे। जमींदार हा सब्बो बात ल सरपंच ल बताथे। तहाले सरपंच हा सब्बो बात ल सुन के अपन मित्र के पक्ष लेके फैसला सुनाइस। लकड़हारा केशव हा बहुते उदास होके रोवत रोवत अपन घर जाथे। केशव सब्बो बात ल अपन बेटी सीता ल बताइस। सीता अपन बाबू ल कहिथे, ते कोनो बात के चिंता फिकर झन कर बाबू, भगवान के घर देर है फिर अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाही। बिहान दिन केशव के तबीयत हा चिंता के मारे एकदम खराब हो गए। सीता हा अपन बाबू के तबीयत ला देख के कहिथे, बाबू मैं लकड़ी ला बेचे बर जाहूँ, मरता नहीं तो करता क्या? आदमी एक भी तपेट बर काय काम नहीं करे भैया। केशव अपन बेटी ला कहिथे, ले जा बेटी, फिर जल्दी घर आबे। तहाले सीता हा लकड़ी ला ऊँट की पीठ मा लाद के बाजार जाय ला लागिस। बाजार में पहुंचे के बाद एक कोंटा मा खड़ा होके चिल्लाए बर लगीस, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सुखी सुखी लकड़ी ले लो। सीता के आवाज ला सुन के उही चलाक जमींदार हा सीता के पास जाके सीता ला पूछे ला लागिस, का मोल भाव है लकड़ी के? सीता कहिथे, जी मालिक, 4 सिक्का। जमींदार कहिथे, ये तो बहुत ज्यादा है, फिर ठीक है, जैसे ऊँट के पीठ मा लगदा है वैसने मोर घर में छोड़ के आना है। सीता ला सब समझ में आगे कि यही जमींदार हरे जेन हम मोर बाबू ला अपमान करीस। सीता जमींदार ला कहिथे, ठीक है मालिक। तहाले जमींदार हा 4 चांदी के सिक्का ला देवत रहीस। त सीता कहिथे, अभी रहन दे मालिक, घर में जाए के बाद तोर हाथ समेत देबे। जमींदार कहिथे, ठीक है, संगी हो। तहाले सीता हा जमींदार के घर लकड़ी ला पहुंचा देथे। जमींदार हा सीता ला चांदी के 4 सिक्का दे ला लागिस। त सीता कहिथे, ये का करत हस मालिक? तोर हाथ ला घलो दे। सीता के बात ला सुन के जमींदार के होश उड़ गे और एड़ी के रीस हा तरवा में चढ़ गे रहा है। जमींदार हा सीता ला खिसिया के कहिथे, ते पागल उगल हो गए हस का? कोनो हा अपन हाथ ला काट के दीही? सीता हा कहिथे, देख मालिक, ते अपन जुबान ले मुकर मत, जैसे जुबान दे हस ना ओखर पालन कर। जमींदार हा सीता ला उल्टा पुल्टा बोले ला लागिस। सीता घलो चिल्ला चिल्ला के गांव वाले मन ला इकट्ठा कर लीस। अब सीता हा सब्बो बात ला गांव वाले मन ला बताते। गांव वाले मन घलो जमींदार ला दोषी मान लेते। फिर जमींदार हा अपन गलती नहीं मानिस त गांव वाले मन सरपंच जी के पास जाय के फैसला करीन। तहाले सीता जमींदार और जम्मो गांव वाले मन सरपंच कर चल देते और सब बात ला सीता हा सरपंच ला बताते। सरपंच घलो ए बार जमींदार के साथ नहीं दे सके, काबर की जम्मो गांव वाले मन सीता डहर रहा है। सरपंच सीता ला बहुते समझाइस, फिर सीता हा एको नहीं सुनीस। जमींदार हा सीता ला कहे ला लागिस, मैं तोला 4 सिक्का के बदला 5 सिक्का, 1 बैल, 1 ऊंट ला दीहूं। सीता कहिथे, मला कुछ नहीं चाहिए, सिक्का तोर हाथ चाही। सरपंच घलो अमजस में पड़ जाते कि मैं का करूं, कैसे अपन दोस्त के जान ला बचावाऊं। कहूं सीता डहर सही फैसला नहीं करूं तो राजा साहब मेरे बात हा चल दी। सोच विचार के सरपंच हा अपन फैसला सुनाइस कि जमींदार हा अपन एक हाथ ला काट के 4 चांदी के सिक्का सीता ला दिए जाए। अब जमींदार के दोनों गोर हा जमीन तरी ले खिसक जाते। फिर जमींदार हा सीता ला कहिथे, मैं तोला 100 चांदी के सिक्का देहूँ, अब तो मान जा। सीता बड़ सोच समझ के जमींदार ला कहिथे, बस जमींदार साहब, तोर हाथ की कीमत बस 100 चांदी के सिक्का हरे? चल ठीक है, हमार गरीब के मन बहुत साफ सुथरा रहते। फिर जमींदार हा बोल तो दिस कि मैं हर 100 ठन चांदी के सिक्का ला देहूँ कहके। फिर जमींदार के जीव हा तरी तरी चुरत रहा है। और फिर जमींदार हा सीता ला कथे, तहे अपन आप ला भारी बुद्धि वाली समझ थस ना, फिर मोले चतुर नहीं हस। चल मैं एक कहानी बताहूँ
कहूँ वो कहानी ला सरपंच जी गांव वाला।

0: मन अउ तहूँ अछूट हरे कहिबे त तोला चांदी के 100 सिक्का ला दे ला परही। अउ सच होही कहानी हा त मैं तोला 1,000 के सोना के सिक्का दूँ। बोल लड़की, मंजूर है? सीता कहते, ठीक है जमींदार जी। जमींदार हा चराकी से एक मनगनत कहानी सुनाथे। एक दिन मोर घर में 2 गहूँ के दाना मिलीस। मैं ओला खिड़की के बाहर फेंक देऊ। फिर कुछ दिन में ओ दोनों दाना ले पीका फूट गए। 1 हफ्ता में गहूँ हा भारी घना और लंबा हो गए। वहाँ ऊँट सवार घोड़ सवार कहूँ जातीस तो कई कई दिन ले अपन घर के रास्ता ला भुला जाए। एक दिन ऐसे होइस कि मोर 10 ठन बकरी गहूँ के जंगल में गीस तब वापस नहीं मिलीस। जब मैं फसल काटे तबो बकरी मन नहीं मिलीस। ओखर बाद मैं हाँ बकरी मन के सुरता करे बर छोड़ देऊ। फिर वही गहूँ ला थोड़ा मोर बर पिसान पिसवायो और बाकी ला बेच देऊ। जितना बकरी रहीस देखा ले 2 गुना पैसा कमायो। एक दिन मोर पत्नी ला बोले, हे भाग्यवान, इतना दिन हो गए गहूँ ला पिसवाए फिर 1 दिन रोटी नहीं बनाए। मोर पत्नी हाँ कहते, हाँ जी मैं भी रोटी बना के लावा था। फिर तुरते मोर पत्नी हाँ गहूँ के रोटी ला और सरसों भाजी के साग ला बना के लईस। फिर मैं हाँ भारी स्वाद लेके खाए ला लगे। 4-5 कावरा खाए रहे तहाने अचानक मोर मुँह डाले बकरी के आवाज आए ला लगीस। तहाने मोर मुँह डाले सबो बकरी मन निकल गए। बस मोर किस्सा यही मेर खत्म हो गए। अब बतावा मोर कहानी सही है या झूठे? सरपंच के संग संग गांव वाले मन घलो कहते ये सब बात गलत है, ऐसे हो नहीं सका। हमन कभू अपन दादा पुरखा देखे न सुनियन दादा, यह का किस्सा है? संगी हो जमींदार है सीता मेर जाके कहते, कैसे लागी सीता मोर कहानी है? सीता कहते, वाह वाह जमींदार जी, तोर कहानी बिल्कुल सच है। काबर की तोर संग चतुर संग बिल्कुल ये घटना हो सकते। जमींदार है सीता ला कहते, 100 ठन चांदी के सिक्का ला दे और तोर मुँह ला यहाँ से काला कर। फिर सीता कहते, ऐसे नहीं जावा जमींदार जी, अब मोरो कहानी ला तो सुन ले, तभे तो दोनों के फैसला होही। जमींदार है कहते, ले ठीक है अपन कहानी ला बता। सीता अपन कहानी ला सुनाए ला लागिस। एक दिन मैं हाँ अपन गांव के बीचों बीच कपास के पेड़ लगायो। वो कपास के पेड़ है अतका बाढ़ गए ते बादल ला घलो अमर डरीस और उखर छाव हाँ पहाड़ में परे ला लागिस। गाँव सब गाँव वाले मन कहा, वाह नोनी का पेड़ लगा है सो पूरा गांव भर छाव है। जब कपास के पेड़ हा पाके ला लागी तब मैं हा ओला बोरी में भर के 100 घोड़ा की पीठ में लाद के मोर बड़े भाई ला शहर के बाजार में बेचे बर भेजे। जब मोर भाई हा शहर के बाजार ले कपास ला बेच के घर आवत रहीस तब कौन लुटेरा मन उखर सब पैसा कौड़ी 100 घोड़ा ला लूट लीस। हे भगवान, मैं कौन ला राखी बांधू? तहाले सब गाँव वाले मन सीता ला कहते, कौन हरे तोर भाई की हत्यारा? सीता फिर कहते, यही जमींदार हरे जिन हम मोर भाई की कातिल हरे। सरपंच सीता ला कहते, हम तोर बात ला कैसे सच मान लेबो, ये सब झूठ हरे। सीता कहते, सरपंच जी कहूँ मोर बात झूठ हरे तो जमींदार ला पूछ ले। सीता के बात ला सुन के जमींदार के होश उड़ गे रहा है और एकदम बुरी तरह ले अपने जाल में अपने फंस गे रहा है। जमींदार भारी गुस्सा में होके आंखी ला लाल करके सीता ला कहते, झूठी लड़की, तोर जी से झूठी तो पूरा दुनिया में नहीं हुई। संगी हो सीता कहते, जमींदार जी शक्कर देवे तो शक्कर पाबे और टक्कर देवे तो टक्कर पाबे।
1: जैसे करबे तैसे भरबे, ये कहानी अभी आप मन सुनत रहो श्रीमती राधिका पटेल ले। और कार्यक्रम में आगे बढ़त हवन और आप मन ल सुनवात हन श्री रामेश्वर शर्मा ले कविता।
2: दादा नाम के कविता ला पढ़त हूँ, जेन घर के मुखिया होते ओकर ऊपर लिखे मोर कविता है। सुनू आप मन कि दादा, मोर दादा, तुहर दादा, सबके दादा। मोर दादा, तुहर दादा, सबके दादा, त्याग के मूरत दादा। त्याग के मूरत दादा, तपस्या करैया, पीरा के जनैया, पीरा ला सहैया, संगी कस मनैया, मेहनतिया दादा। पीरा के जनैया, पीरा ला सहैया, संगी कस मनैया, मेहनतिया दादा। कमैया दादा, परिवार के पोसैया, सब ल बल देवैया। परिवार के पोसैया, सब ल बल देवैया, संसोक करैया दादा, संतान ला संभलैया, संतान ला संभलैया, रास्ता में किंजरैया, रास्ता के बतैया, हाट ले जवैया, देखभाल करैया, देखभाल करैया, अपन सुख के त्याग करैया, अपन सुख के त्याग करैया, सबके जरूरत पूरा करैया, संतान ला पढ़ा के महान बनिया, संतान ला

पढ़ा के महान बनैया, संतान ला आगू बढ़ैया, परिवार बर समर्पित ददा। संतान ला आगू बढ़ैया, परिवार बर समर्पित ददा। ददा ले परिवार एक है, ददा ले परिवार एक है, हमर भगवान के रूप है ददा। हमर भगवान के रूप है ददा, ददा के सिख हमर बढ़े, ददा के सिख हमर बढ़े, मैं घलो बनहूँ आगू ददा, मैं घलो बनहूँ आगू ददा, रास्ता जेन बताए है ददा, रास्ता जेन बताए है ददा, उही रास्ता में चलूँ मैं घलो, उही रास्ता में चलूँ मैं घलो, वैसने बनहूँ परिवार के ताकत, रखूँ एक मई सबला, रखूँ एक मई सबला, ई महे संस्कृति और संस्कार, संस्कृति और संस्कार, एक दूसर रचना कि जिंदगी के सुख, जिंदगी में अबड़ किस्म के सुख होते, तेकर ऊपर ये रचना लिखा है, कविता लिखे हुए हैं, सुनियो आप मन। जिंदगी में किसिम किसिम के सुख, जन्म ले मरण तक, जिंदगी में किसिम किसिम के सुख, जन्म ले मरण तक, सुघर रहे कुरिया, सुघर रहे कुरिया, जेमा रहे परिवार सुख ले, सुघर रहे कुरिया, जेमा रहे परिवार सुख ले, रहे धन दोगानी सबो तीर, रहे धन दोगानी सबो तीर, रहे बिन कर्जा के, रहे बिन कर्जा के, रहन सबो पीड़ित के बंधना मा, रहन सबो पीड़ित के बंधना मा, रहन जुर मिलके, रहन जुर मिलके, पावन सबो सुख के आनंद, रहन जुर मिलके, पावन सबो सुख के आनंद, जुर मिल कमावन, जुर मिल कमावन, सुख पावन जेकर ले, जुर मिल कमावन, सुख पावन जेकर ले, बनी भूति ले चले जिंदगी, बनी भूति ले चले जिंदगी, सुख में रहे परिवार, बनी भूति ले चले जिंदगी, सुख में रहे परिवार, कोनो नी रहे अभाव में, कोनो नी रहे अभाव में, रहे सुख में, कोनो नी रहे अभाव में, रहे सुख में, घर में कोनो झन रहे रोगी, घर में कोनो झन रहे रोगी, सभो जिन रहे निरोगी तन मन ले, सभो जन रहे निरोगी तन मन ले, परिवार रहते जब सुख मा, परिवार रहते जब सुख मा, तब घर गोसैया रहते सुख मा, परिवार रहते जब सुख मा, तो घर गोसैया रहते सुख मा, करथन जुर मिल के मेहनत, करथन जुर मिल के मेहनत, पहाथे जिंदगी कमाए ले, करथन जुर मिल के मेहनत, पहाथे जिंदगी कमाए ले, कुछ करे में मिलते ताकत, कुछ करे में मिलते ताकत, घर में होवे सुघर गोसाइन, घर में होवे सुघर गोसाइन, संहारे पूरा परिवार, संहारे पूरा परिवार, एमा मिलते परिवार के सुख, जेमा सुघर संतान, माने सबके कहना, संग में रहे भाई बहनी, संग में रहे भाई बहनी, तेमा सुख अपार, संग में रहे भाई बहनी, तेमा सुख अपार, घर में हो या बाहर, घर में हो या बाहर, झन होवे कोनो बैरी, घर में हो या बाहर, झन होवे कोनो बैरी, रहन संग सुखे सुखमा, रहन संग सुखे सुखमा, सबके सुघर होवे पड़ोसी, सबके सुघर होवे पड़ोसी, सुघर होवे गोट बात, सुघर होवे गोट बात, सहारा होन एक दूसर के, सहारा।

0: होवन एक दूसर के मितानी होवे संग संग में, सहारा होवन एक दूसर के मितानी होवे संग संग में, पीड़ित करण एक दूसर ले, पीड़ित करण एक दूसर ले, मन हथिराए एक दूसर ले, मन हथिराए एक दूसर ले, सुख में रहन सब जुर मिल, सुख में रहन सब जुर्मिल, पढ़ाई लिखाई होवे बने, पढ़ाई लिखाई होवे बने, बनन पढ़ लिख के बड़का मनखे, बनन पढ़ लिख के बड़का मनखे, पढ़ाई ले होते फायदा, पढ़ाई ले होते फायदा, ठगा नहीं सकन कोनो, पढ़ाई ले होते फायदा, ठगा नहीं सकन कोनो, होवे जिंदगी में सुघर गुरु, होवे जिंदगी में सुघर गुरु, रास्ता दिखावे सुघर जेन्हा, होवे जिंदगी में सुघर गुरु, रास्ता दिखावे सुघर जेन्हा, होवे साधु संत के संगत, होवे साधु संत के संगत, सुनन भागवत के कथा, बताए जेन्हा रास्ता, बताए जेन्हा रास्ता, चलन उही रास्ता मा, बताए जेन है रास्ता, चलन उही रास्ता मा, मन में रहे हर घड़ी सुख, मन में रहे हर घड़ी सुख, पहाई सुख ले जिंदगी, पहाई सुख ले जिंदगी, भले हो जावे सुख में कमी, पहाई सुख ले जिंदगी, भले हो जावे सुख में कमी, फिर जियन सुघर सुख मा, फिर जियन सुघर सुख मा, जतका मिले सुख, जतका मिले सुख, ओतके सुख में जियो, यही महे सुख पाए के, यही महे सुख पाए के सुख, यही लगे थे जिंदगी के सुख।
1: अभी आप मन श्री रामेश्वर शर्मा ले छत्तीसगढ़ी कविता सुनत रहो, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं। 9:55 तक अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।
0: आप सुन रहे थे आवाजें सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की थी, समीर अंजान के बोल थे। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी के जान से। कमल खान और पलक मुछाल की आवाजों में वो गीत आपने सुना था, शबीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनाएंगे गाने।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। अब आपको चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

अरमान खान और साथियों की आवाजों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक

0: अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज थी। गुलजार के बोल थे विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए। गुलजार के बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोर दा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोर दा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण

किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते।

0: अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए आइए अब जुड़ेंगे रायपुर केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा द्वारा रायपुर में कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जलयुक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही अनेक साधु संत और विभिन्न समाजों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें रायपुर जिले के 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए हैं। इन पात्र अभ्यर्थियों को जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के माध्यम से निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी 10 अगस्त तक जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में आवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए आज विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कोरबा के पात्र हितग्राही शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम में पेंशन, ECHS, दस्तावेजों के अद्यतन और अन्य कल्याण संबंधी मामलों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में सोमवार को सहयोग केंद्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं

0: से सीधे संवाद कर प्राप्त आवेदनों के समाधान के लिए पहल की। सहयोग केंद्र में प्रदेश भर से लगभग 300 कार्यकर्ता पहुंचे। आज कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भर के पटवारी पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर कल सोमवार को हड़ताल पर रहे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 5 अगस्त को जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां 137 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल पर पहले से पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भी एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा द्वारा रायपुर में कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

अनंत काल से प्रकृति अपनी अनमोल धरोहर को सब पर न्योछावर कर रही है। झरझर करते झरने हों या कलकल बहती नदियाँ,

0: जंगलों की सुरम्य घाटियां हों या फिर सीना ताने खड़े पर्वत, इसी धरा पर अटखेलियां करते वन्य जीव हैं तो यही हैं वनस्पतियों की कई प्रजातियां। कुछ ऐसा ही नजारा है हमारे अपने छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जंगलों का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ है। इसकी गोद में पलने वाले वन्य प्राणियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हाथियों का एक विशाल कॉरिडोर अपने विचरण क्षेत्र के लिए विख्यात है। अक्सर हाथियों के दल खेतों और गांवों तक पहुंच जाते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जंगलों में वनस्पति का अभाव और बढ़ती मानव आबादी की सघनता से भी ऐसा होता है। यही परिस्थिति हाथी मानव द्वंद्व का कारण बनती है। इससे जनहानि तो होती ही है, हाथियों की जान भी प्रायः खतरे में पड़ जाती है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में मानव हाथी संघर्ष एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इस समस्या से निपटा जा रहा है। यहाँ हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम के लॉन्च हो जाने के बाद से इस संघर्ष में काफी कमी आई है। इससे ये साबित होता है कि प्रौद्योगिकी मानव सुरक्षा और वन्य प्राणियों के संरक्षण के बीच की खाई को पाट सकती है।
1: मैं मंसूर खान, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। वर्तमान में भारत सरकार की प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्टेयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ। हम लोग का मुख्य कार्य ये रहता है कि हाथी एवं मनुष्य या दूसरे वन्य प्राणी से संबंधित जो समस्याएं आती है, तो उसके संबंध में इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसका एक सार्थक एक सलाह सरकार को देना होता है। और यह जो हम स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों अपना जैसी परिस्थितियां रहती है समय समय पर सलाह देते हैं, और साल में एक हमारी बैठक होती है एक या अधिक जैसा निर्धारित करेंगे, उसमें भी हम लोग पॉजिटिव एक वातावरण में सलाह देते हैं। जो जितने भी आपसी संघर्ष जो होता है इसमें अपन अगर इसको फील्ड में देखेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे तो इनके रहवास जो है प्रभावित हुआ है, और रहवास ऐसा प्रभावित हुआ है कि कोई बड़े रेल लाइन निकल गई, कोई बड़ी सड़कें निकल गई, कोई बड़ा नहर निकल गया, कोई बड़ी फैक्ट्रियां आ गई, कोई खदान आया, तो इस तरीके से इनका आवास प्रभावित हुआ, या बड़ी बस्ती बस गई। दो जंगलों के बीच में जो इनका रास्ता होता है एक बड़े जंगल से दूसरे जंगल में, तो वो रास्ता पूरा गायब हो गया, कहीं तो पतला रास्ता बना हुआ है, बहुत से जगहों में गायब हो गया। और इनको ये मान के चलिए कि इनके अंदर इंटरनल जीपीएस जैसा एक ज्ञान रहता है जिससे ये रास्ता पहचान लेते हैं कि पूर्व में हमारे पूर्वज इस रास्ते का इस्तेमाल करके जाते थे, और उन्हीं रास्तों का ये उपयोग करते हुए जाते हैं, और उस बीच कोई भी आता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को लगता है हाथी आ गया, लेकिन वास्तव में उसका पुराना पूर्वजों ने जो बताया रास्ता है उसको वो इस्तेमाल करके जाता है। जैसे अचानक मार से कान्हा जा रहा है हाथी, उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है जो पहले हाथी करा करते। संघर्ष का मुख्य कारण ये है मनुष्य की आबादी जंगल की ओर जाना, और एक ये होता है कि हमको हाथी को सिखाना है पढ़ाना है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि हम अपने आचरण से उसको सिखाएं, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, दूरी बना लें। गांव में आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जंगल में उसको देखने जाते हैं, अगर जंगल हम उसको देखने नहीं जाएंगे तो वो गांव की तरफ नहीं आएगा, और गांव में जैसे आने से जो रोकना है रोकने का प्रयास वो वन विभाग अपने अपने ज्ञान से और बाकी हिसाब से करता रहता है। एक तो एआई में जैसे अभी कर्नाटक बहुत अच्छा काम किया है, कर्नाटक वन विभाग में इन लोग एक वर्क किए हैं कि जो रेल लाइन है उसके किनारे रेल मंत्रालय के साथ मिलके कि एक उसके इमेज से अलर्ट जाएगा, उसकी फोटो से दूरी में अलर्ट होगा किसको, रेलवे को, और वो अपनी ट्रेन की रफ्तार धीरे कर लेंगे, जहां रोकने की जरूरत है रोक लेंगे, और कुछ जगह जहां जहां पे ज्यादा है खतरे की संभावना है वहां पे उन लोग इसी तरीके कैमरे के इस्तेमाल करते हुए और सोलर फेंसिंग भी किए हुए हैं। तो ये एआई के माध्यम से

0: आज छत्तीसगढ़ में वन विभाग मानव हाथी संघर्ष से बचने के लिए AI आधारित छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप का उपयोग कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली के माध्यम से उच्च तकनीक निगरानी के आशाजनक परिणाम आए हैं, जो ग्रामीणों को रेडियो, वायरलेस, मोबाइल और माइक्रोफोन स्पीकर के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में हाथियों की गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
1: उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: छत्तीसगढ़ में भोजन, पानी और आवासों की प्रचुरता के कारण हाथियों की आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण वन और हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने प्रभावित गांवों में हाथी मित्र दल की स्थापना, जन जागरूकता अभियान और हाथियों के प्राकृतिक आवासों को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
1: मेरा नाम विनय कुमार देवांगन है, मैं कल्याणपुर रहने वाला हूँ, जिला सूरजपुर है। उसमें हाथी आया था 5 ठो, उसमें 5-6 आदमी को मौत के घाट उतारा था 5-6 महीने के अंदर। जन हानि का नुकसान पहुंचाया था 5, तो फसल भी नुकसान किया था, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, साग सब्जी जो लगाते हैं वो भी बहुत नुकसान किया है 5-6 महीने में। 2 घर तोड़े थे, 6 हाथी थे, 6 नर ही थे। उसी इलाके में करते हैं बलराम, अभी तो फिलहाल बलरामपुर जिले के बगल में है, कल्याणपुर जंगल से सटा हुआ है, 5 किलोमीटर के दायरा में है। जब यहाँ पे वन विभाग से मदद तो मिलता है, रेडियो से देते हैं तो ठीक ही देते हैं, जानकारी तो फायदा है, लेकिन अचानक आ जाते हैं वही नुकसान पहुंचाते हैं हाथी को, जैसे कि रातों रात जैसे चलते हैं तो आ जाते हैं कभी कभी।

0: छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप हाथियों की आवाजाही की जानकारी समय पर गांवों तक पहुंचाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत ही ये संभव हुआ है। रियल टाइम ट्रैकिंग के तहत जमीन पर गश्त करने वाली टीमें और ट्रैकर हाथियों के झुंड की जानकारी ऐप में डालते हैं। ये सिस्टम 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को तुरंत चेतावनी देता है। वन विभाग सूचना मिलते ही तत्काल टीम भेजकर हाथियों को आबादी से दूर रखते हैं। इससे हाथियों की रक्षा भी होती है और जान माल को भी कोई हानि नहीं होती।
1: मेरा नाम कुमार निशांत है, मैं वन मंडलाधिकारी कटघोड़ा हूँ। कटघोड़ा वन मंडल अंतर्गत कुल 4 परिक्षेत्र में हाथियों का विचरण होता रहता है, जिसमें कुल आज दिनांक तक 51 हाथी जो है विचरण कर रहे हैं। ये ज्यादातर जब महुआ का सीजन आता है उसके बाद से इनका विचरण रिहायशी इलाकों में ज्यादा हो जाता है, और यह जो है सबसे ज्यादा धान जब पकने लगता है उस वक्त

0: या धान खाने के लिए जंगलों से बाहर आते हैं। इसमें यह उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा वन मंडल जो है यह आदिवासी क्षेत्र है और साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा है। इसके कारण यहाँ पे आदिवासियों के मकान में अगर महुआ संग्रहण करके रखते हैं या धान कटाई के बाद धान को घर में रखते हैं तो अक्सर घर की तरफ भी आते हैं और घरों को तोड़कर ये महुआ या धान को खाते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसानी होती है वो फसल की नुकसानी होती है, कभी कभी इसमें पशु हानि भी होती है और मकान हानि करते हैं, संपत्ति हानि करते हैं। और ऐसा देखने को आया है कि कभी कभार जो है जन हानि होती है। विगत 3 वर्षों से हम लोगों के द्वारा जो है अनेक प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गए हैं, जिसके कारण जो है अभी वर्तमान में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की घटना में काफी कमी आई है। इसमें हम लोगों के द्वारा जो है स्थानीय जो युवा हैं उनकी टीम तैयार की गई है, जिसको हम लोग हाथी मित्र दल बोलते हैं। ये युवा जो है इनको हम लोगों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत इनको प्रॉपर रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ हम लोगों को इनके बहुत सहयोग मिला है, जिसके कारण गांव वालों को समय पे हाथियों के विचरण के संबंध में जानकारी दी जाती है। साथ ही अगर कहीं पे हाथी आया है तो इनके द्वारा जो है हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा जाता है और जरूरत पड़ने पर तो गांव वालों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। साथ ही हम लोगों के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें सबसे जो विशिष्ट कार्य हुए हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है हम लोग हाथियों के विचरण के संबंध में लोगों को जानकारी देते हैं। यहाँ पे गत संकेत ऐप चलाया जाता है। इस ऐप के माध्यम से अगर हम हाथी की एंट्री करते हैं तो जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं हाथी के एंट्री के पॉइंट से 5 किलोमीटर की परिधि में उनके मोबाइल पे SMS और कॉल चला जाता है, जिसमें हाथी के विचरण की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त सजग अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है। सजग अलर्ट सिस्टम में गांव में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। इन टावर्स में अगर हम पता चलता है कि हाथी किसी गांव की तरफ जा रहा है तो वहां का रिमोटली हम लोग टावर जो है वो एक्टिवेट करते हैं और जोर जोर से हुटर बजता है, जिससे गांव वालों को पता चल जाता है कि हाथी जो है वो उनके गांव की तरफ आ रहा है, या अगर कोई व्यक्ति अगर जंगल की तरफ गया है तो उनको भी सूचना मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों के द्वारा जो है नियमित रूप से हाथियों के संबंध में सूचना, जागरूकता एवं कैसे बचाव किया जाए इसके लिए भी गांव वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है एवं जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है। इन सभी क्रियाकलापों से विगत 3 वर्षों में जन हानि न्यून हुई है, साथ ही हाथियों का भी कैजुअलिटी जो है वो काफी कम हुआ है। हम लोग के द्वारा जो है जन हानि के प्रकरण में 6 लाख का मुआवजा देते हैं। अगर फसल हानि होती है तो इसमें जो है हम लोगों के द्वारा जो है लगभग 9,000 रुपया प्रति एकड़ के मान से मुआवजा राशि का वितरण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसके जो उपचार में खर्च आता है उसका मुआवजा हम लोग देते हैं। पशु हानि होती है तो उसका भी हम लोग मुआवजा देते हैं। साथ ही संपत्ति हानि होती है, इसका आकलन करके राजस्व विभाग के द्वारा का आकलन किया जाता है और उसके बाद हम लोग उसका मुआवजा हानि का वितरण करते हैं समय से, वो भी हम लोग DBT के माध्यम से करते हैं, डायरेक्ट खाता में ट्रांसफर करते हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद। वन विभाग भी समय समय पर ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की सूचना जागरूकता संदेश के जरिए देता रहता है। बचाव संबंधी उपायों के पालन के तहत ग्रामीणों को बताया जाता है कि हाथियों से सामना होने पर उनसे ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखें, घर के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें, हाथी विचरण क्षेत्र में अपने गांवों के बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जनधन हानि होने पर बदले की भावना से हाथियों के पास न जाएं। इसके अलावा और भी कई सुरक्षा उपाय समय समय पर जारी किए जाते हैं।
2: अमलेंदु मिश्र, हाथी विशेषज्ञ हूँ और पिछले 33-34 सालों से छत्तीसगढ़ और देश के सेंट्रल इंडिया में हाथियों पर काम कर रहा हूँ। हाथियों का व्यवहार थोड़ा समझने की जरूरत है। हाथियों में जो सबसे उम्र दराज मादा हथिनी होती है वो लीडर होती है और वो पूरे ग्रुप का संचालन करती है। इसके माध्यम से वो पूरे ग्रुप को किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ रहना है, कब कितनी दूरी तक चलना है, ये सब कुछ उसी के निर्देशन में तय होता है। इस कारण हाथियों के व्यवहार को थोड़ा समझने की

जरूरत है। और हाथी इस समय, क्योंकि हमारे पास जंगल बहुत बिखरा हुआ हो गया है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो लगातार विचरण करते हैं। हाथियों को हम लॉन्ग रेंजिंग एनिमल कहते हैं, वो लंबी दूरी तय करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस कारण वो लगातार विचरण करते रहते हैं। इसीलिए वो एक स्थान पर रुक करके हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, लगातार विचरण करते हैं और अपना भोजन और आवास लगातार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि हाथियों की लगातार उपस्थिति हर क्षेत्र में लगभग बनी हुई है और उसका एक जो प्रॉपर कॉरिडोर है जिसमें उनका, या गलियारा कहेंगे, जिस गलियारे से वो आवागमन करते थे पिछले कुछ सालों में, वो लगभग उनका रास्ता बदल गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत तरह के विकास कार्य हुए हैं या कि मानव की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है, इस कारण वो अपना रास्ता बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान या एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ डाइवर्ट होकर के वो विचरण कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनका सीधा सामना मनुष्य से होता है और जब किसी भी वन्य प्राणी से या हाथियों से किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल सामना हो जाता है तो इसमें दुर्घटना होती है। इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हाथियों के व्यवहार को, हाथियों के आवागमन के मार्ग को और हाथियों की उपस्थिति को हम लगातार वाच नहीं करते हैं या उसकी अनदेखी करते हैं, इस कारण हमारा सीधा सामना होता है। और फिर वही बात होती है जो हम कहते हैं कि मारा वही जाता है जो कमजोर होता है, और कमजोर कोई भी हो सकता है क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियां होती हैं जिससे वो कमजोर हो सकता है, वो बूढ़ा, वो सयान, वो महिलाएं, वो बच्चे या पिया हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें या दूसरी तरह से कहें तो हाथी भी हो सकते हैं। हाथी भी इलेक्ट्रोक्यूशन से, पॉइजनिंग से, या कि हाथियों के बच्चे किसी बड़े तालाब में डूब करके मर रहे हैं। तो ये आपस का संघर्ष इस तरीके से बढ़ रहा है, इसको और विस्तार से समझने की जरूरत है, तब हम हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक मिनिमाइज कर पाते हैं। देश के अन्य राज्यों में जहां हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके बाद वहां के लोग उसके साथ रहना सीख गए हैं और उस समय को अवॉइड करते हैं जब हाथियों के निकलने का, चरने का या आवागमन का समय होता है तो अपने को वो बचा पाते हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हमर हाथी हमर गोठ, आकाशवाणी के माध्यम से, जो शाम को 5 बजे राज्य के 4 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित हो रहा है। इससे हम हाथियों की उपस्थिति को बता रहे हैं कि आज हाथी कहाँ है और उनका संभावित विचरण क्षेत्र क्या हो सकता है। तो इसको सुन करके लोग अपना रास्ता बदल के सुरक्षित रास्ते से, दूसरे रास्ते से अपने गांव, अपने घर वापस लौट रहे हैं। शाम का 5 बजे का समय भी इसीलिए चुना गया है कि लोग अपने काम से वापस लौटते हैं, ऑफिस से लौटते हैं, कामकाजी लोग लौटते हैं और इस तरीके से वापस लौटते हैं। तो जब वापस लौटते हैं और वही समय हाथियों के जंगल से निकल के चरने जाने का समय होता है, ठीक सूर्यास्त के समय। तो ये आपस का एनकाउंटर समय है। अगर इस समय को हम लोग बदल पाते हैं तो हम हाथियों से सीधी भिड़ंत से बच सकते हैं। तो हाथियों से बचने का, हाथियों को जानने का ये कुछ छोटा छोटा उपाय है। अगर इन उपायों को हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम काफी दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पिछले 2 दशक पहले अगर देखेंगे तो हाथियों का प्रवास पड़ोसी राज्यों से, झारखंड, बिहार और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य में होता था और ये उस समय प्रवासी थे, ये कुछ समय यहाँ रुक करके और वापस फिर अपने राज्य वापस चले जाते थे। लेकिन इस दशक में अगर देखेंगे, पिछले 7-8 सालों से या 10 सालों से, तो हाथी यहीं के निवासी हो गए और वो पूरे वर्ष भर इन्हीं जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में निवास करते हैं और वो यहीं रहना चाहते हैं। इसमें सरगुजा से अगर प्रारंभ करेंगे तो सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, बिलासपुर के क्षेत्र रायपुर और कांकेर तक इनकी उपस्थिति लगातार बनी हुई ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में पूरे

वर्ष भर हाथी यहीं रहता है और यहीं रहना चाहता है, तो हमको हाथियों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हाथियों से बचने के उपाय के लिए कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेज पे अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं। अगर एक ही तरह का प्रयोग करेंगे तो हाथी उन चीजों को सीख जाता है और वो उससे उससे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंट हो जाता है, सीख करके वो उन चीजों को नकार देता है। तो इसके लिए हर बार हम एक नए प्रयोग के साथ वापस आते हैं। उसमें एआई के साथ एक ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से गांव वालों को हाथियों को सूचना दी जा रही है कि आपके गांव के 10 किलोमीटर के आसपास हाथियों की उपस्थिति है और आप सावधानी बनाए रखें, शाम को रात को कहीं भी आवागमन ना करें और भोर में विशेषकर सुबह आप जंगल में ना जाएं। थोड़ा सा इंतजार करें, जब सूर्योदय हो जाता है, धूप तेज हो जाती है, जब हाथी जंगल के बीच क्षेत्र में चला जाता है, तब आप जा करके ऐसे क्षेत्र में जंगल में जा सकते हैं, तो हाथियों से बच सकते हैं। तो एआई का एक बहुत अच्छा प्रयोग अभी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में किया जा रहा है प्रयोग के तौर पे। अगर ये सफल होगा तो राज्य के अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा।

0: वन में मानव हाथी संघर्ष को कम करने में AI आधारित ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप डेटा एकत्र करता है और ग्रामीणों को समय पर संदेश भेजता है। ये ऐप इतना कारगर है कि हाथी ट्रैकर्स और मानव गश्ती दल के सहयोग से हाथियों की उपस्थिति और गतिविधियों की पहचान करता है। इसका सुखद परिणाम ये रहा है कि इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से मानव हाथी संघर्ष के मामलों में काफी गिरावट आई है।
1: मेरा नाम वरुण जैन है और मैं उप निदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि गरियाबंद और धमतरी जिले में स्थित है वहाँ पदस्थ हूँ। हमारे जो टाइगर रिजर्व में हाथी जो है 2020 से इनका मूवमेंट शुरू हुआ है, तो उड़ीसा के नुआपाड़ा और खरियार रोड से जो है आ रहे हैं लगातार। अभी तक दो दल हमारे टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे हैं जिसमें लगभग 40 हाथी हैं। एक दल में 30 हाथी हैं जिसका नाम सीकासार दल है, दूसरे दल में 10 हाथी जिसका नाम गुलाब दल है। तो ये जो दल हैं उनका लगातार जो है विचरण 5 साल से हमारे टाइगर रिजर्व में चल रहा है और उसके कारण शुरू में काफी द्वंद्व की स्थिति भी जो है हमारे यहाँ निर्मित हुई थी। तो उस द्वंद्व का जो हमने एक तैयार किया है कि कैसे उससे निमटना है, तो उसमें एक हमने एक एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप हमने जो है लॉन्च की थी, जो 2023 में हमने लॉन्च की थी। उसमें हाथियों की निरंतर जो है हमारे फुट पेट्रोलिंग श्रमिक जो है लगातार उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं हाथी के, और अपनी उसकी जो लोकेशन है वो ऐप में अपडेट करते रहते हैं, और जैसे ही लोकेशन ऐप में अपडेट होती है तो वहां से जो 10 किलोमीटर की परिधि में जितने भी गांव वाले निवासरत हैं उनके मोबाइल फोन्स में ऑटोमेटेड जो है कॉल्स, वॉइस कॉल्स और SMS और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि हाथी आपसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूरी में है। तो इस तरीके से जहां एक तरफ जो है हमें हाथियों का पूरा कॉरिडोर मैपिंग होती जा रही है इसमें, दूसरी तरफ गांव वालों को भी हम अलर्ट करते जा रहे हैं। साथ में हम मुनादी का भी इस्तेमाल करते हैं अलर्ट सिस्टम में, ताकि कोई अगर फोन कॉल या SMS रिसीव नहीं कर पाए तो मुनादी जो है उसको काउंटर कर लेती है।

की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इस नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। वन विभाग हाथी प्रभावित क्षेत्रों में थर्मल सेंसर युक्त इंफ्रारेड ड्रोन की मदद से दिन रात हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ये तकनीक घने जंगलों और अंधेरों में भी हाथियों के झुंड का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इस तकनीक ने ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया है, साथ ही हाथियों के संरक्षण को भी मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक, त्वरित सूचना प्रणाली और प्रशासन की सक्रियता ने वन्य जीव संरक्षण का एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे दुनिया एक सफल मॉडल के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ का ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार

भी हाथियों के झुंड का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इस तकनीक ने ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया है, साथ ही हाथियों के संरक्षण को भी मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक, त्वरित सूचना प्रणाली और प्रशासन की सक्रियता ने वन्य जीव संरक्षण का एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे दुनिया एक सफल मॉडल के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ का ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार अब दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। मानव हाथी संघर्ष को रोकने की परिकल्पना को साकार करता छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संतुलन की दिशा में लगातार बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
2: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम उजाले की ओर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जुबिन नौटियाल और साथियों के स्वर में नीलेश मिश्र की रचना, प्रीतम का संगीत है, फिल्म है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत आपने सुना जुबिन नौटियाला और साथियों के स्वर में। नीलेश मिश्रा की ये रचना थी और प्रीतम का संगीत।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: आप भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास।
3: कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मीत ब्रदर्स जोनीता गांधी और साथियों के स्वर में कुमार की रचना। संगीत मीत ब्रदर्स का है और फिल्म है ड्रीम गर्ल।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रशांत इंगोले और साथियों के स्वर में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा ये गीत। संगीत संजय लीला भंसाली का है और फिल्म है बाजीराव मस्तानी।

कार्यक्रम में आए श्रोताओं, आप सुनते हैं अनाया नंदा और साथियों के गाए इस गीत को। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने, अमाल मलिक का संगीत है और फिल्म है MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी।

हमें तुमसे प्यार कितना। श्रोताओं, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। दिव्य कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं, मनोज मंतशिर की रचना और जीत गांगुली का संगीत।

0: हमें तुमसे प्यार कितना, इस फिल्म का गीत आपने सुना दिव्य कुमार और साथियों के स्वर में। मनोज मुंतशिर की रचना थी और जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यहीं विराम। और अब आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: नमस्कार, उमाशंकर पांडे का लीजिए प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशाओं की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़े। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं, इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती ना करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें ताकि

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी

0: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
0: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं, क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
0: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है, तो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और, विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी,
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी,
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी,
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी,
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी,
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी,
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी,
0: AI हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी,
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी

0: कमेटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो सर के पास चलते
4: हैं। सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
5: नमस्कार सर।
6: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा आजा आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
7: सर मैं इशिता।
8: मैं हूँ चेताली।
9: मैं शुभेंदु।
10: और मेरा नाम है इंदु।
11: और मैं सोमेश।
6: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
7: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
6: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
9: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
11: सर फिर क्या होता है?
6: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदे पड़ती है और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
9: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
6: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
12: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
7: वाह, कितनी सुंदर बात है।
6: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
13: पौधा।
6: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
13: उल्टा?
6: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
9: फिर क्या हुआ?
6: फिर 2-3 दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूम कर

0: नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो, है ना रोचक बात?
1: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
2: जी सर।
0: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
2: रसपान कैसे करते?
0: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
2: जी सर।
0: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
2: अच्छा, अब समझ आया।
0: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
2: जी सर। यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
1: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
3: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
4: देखो इतना बड़ा पेड़।
3: अरे उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
5: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
2: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
0: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
2: माइक्रोस्कोप?
0: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
6: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
3: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
3: हाँ नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
2: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ।
3: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया?
3: इसमें तो बहुत सारी नलिया हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
5: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
3: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
5: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
3: अरे वाह कितना अद्भुत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
5: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
6: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
3: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
3: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी

0: पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
1: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
2: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
3: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
3: बहुत अच्छी।
0: अब से एक काम जरूर करना।
3: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
3: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
4: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
5: पेड़ की बात अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: आर एम सी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 होने को है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों से और विविध भारती के कार्यक्रमों के बाद 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। उसके बाद पुनः हम विविध भारती के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। तो आइए पहले जुड़ते हैं विविध भारती से।

0: और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त।

0: विविध भारती पर।
1: हाय हाय।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: विविध भारती के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:55 होने को हैं। अब जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हाल में हुए प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा द्वारा रायपुर में कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जल युक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही अनेक साधु संत और विभिन्न समाजों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव को राष्ट्रमंडल खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्हें आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति भी दी जाएगी। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। बाद में ज्ञानेश्वरी ने रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी और उनके माता पिता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी की सफलता से राज्य के युवा प्रेरणा लेंगे और प्रदेश में खेलों के लिए अच्छा वातावरण तैयार होगा। महासमुंद जिले के एक बाल सुधार गृह से कल 8 अपचारी बालक फरार हो गए हैं। ये घटना बरौंदा बाजार की है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के इन अपचारी बालकों ने बाल सुधार गृह की खिड़की की ग्रिल तोड़कर ऊंची दीवार फांदी और फिर फरार हो गए। इन बालकों पर चोरी और गांजा तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस इन बालकों की तलाश में जुटी हुई है। मुंगेली जिले में पुलिस ने तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये कार्रवाई जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में 1 अगस्त की देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद की गई है। हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जिस कार से ये हादसा हुआ उस पर सीएमओ लिखा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भी एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला स्थित

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर चना डोंगरी ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन टीम द्वारा स्वास्थ्य संस्थान का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की संतुष्टि, स्वच्छता, रिकॉर्ड संधारण, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन प्रबंधन, अधोसंरचना, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तथा सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न मानकों पर संस्थान का मूल्यांकन किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हाल में हुए प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों पर दर्ज FIR वापस लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा द्वारा रायपुर में कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे आइए जुड़ते हैं विविध भारती से।
2: सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक 2:00 PM तक और राज्यसभा 2:12 PM तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOC के नाम से वो खड़े होकर के
2: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NJ की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोन जेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। किशोर कुमार का दिन और इस कार्यक्रम में किशोर के कुछ उदास नगमे।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास गाने, यादों की महफिल।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

देवर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आरडी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नव में विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

0: यादें।
1: कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुड़ी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या न करे ये प्रीत रे, कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बजाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, एक बजे मिलेंगे हम। ये है आज की इबारत, और लीजिए एक बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, सुनो
0: भाई सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

राम राम सियाराम सलाम वालेकुम प्यार करो चुप चुप प्रिय चुक चुक ठन ठन।

0: ఫుట్ ఫుట్ ఛన్ ఛన్ ఫుట్ ఫుట్ హౌ యు డు పామ్ చీకి చికి చామ చీకి చికి పామ్ చీకి చికి చామ చీకి చికి పమ్ చిక బుబు చిక పమ్ చిక బుబు చిక పమ్ చిక బుబు చిక పమ్ చిక బుబు చిక బడకే బౌల బేటా పమ్ పమ్
1: भाई बड़के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी देखिए आले बादशाह ना दे कुड़िये ये पुत्र देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
1: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
0: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मताल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा, चल बेटा, बम बम बम, बम चीक चीक चाम चीक चीक बम।
1: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बतिया सुनो जी, मोरी मोरी।
1: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
1: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे, ढिले ता ता ता।

जब चली ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूँ गे गे गली जरा।

0: मैं हूँ लोहा। तुम बक तू
1: भला बच बच के रहूं।
0: गे गे गे गे लीजा रहा।

0: क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गेगे गेगेली जरा टिम्बकटू मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाती है, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरूर सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अब एक गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: सुनो सुनो, चलचित्रम

जय धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र जगत नारायण के छोड़ के संतो नगत नारायण।

0: bum nache Kishore Kumar bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
1: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे. क्या कमाल है. एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे. मेरे दुख सुख का

सार तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: hi baby, hi baby, hi baby.
1: Hi, hi, hi.
0: Hi, hi, hi. Honey, मैं तो बोर हो गया.
1: Really?

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है

0: जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन अक्षय कुमार के सभी गाने वो ही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते। कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग।
1: बलमा हाय और ये भी हक्का।
0: यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का बक्का।

0: भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
1: किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइए।
0: चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको। चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको। समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको। बूम धाम बड़ा बड़ा बूम। आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया।

में। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का पक्का, दुनिया पागल।

आज मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता कहता हूँ पते की सुन ओ सोनिया मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता कहता हूँ पते की सुन वो भी काटे मैं भी काटूं यहाँ सबको है अपनी धुन अरे भागो बंबई से कलकत्ता चलते जाना देके धक्का आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पका ए भी हक्का।

भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप? मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर

0: ये गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर, उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठो जरा बैठ गया।

देखी दिल्ली की एक लड़की जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की।

हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बक्सर भारी, उसका भाई

0: डिनर लंच ब्रेक फास्ट चाय सोडा वाटर
1: होनोलुलु
0: एक नई दुनिया में पहुंचे वहां से द ब्रदर सिस्टर
1: होनोलुलु
2: होनोलुलु होनोलुलु

कहां से पहुंचे और कहां चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

इश्क लगी दिल में जैसे खटरिया ओ सवरिया।

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी और नटखट।

0: गुजरिया ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंगा गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाए हुए हैं? और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई।

0: मत गा अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से अरे भाई निकल के आ घर।
1: क्या तो शानदार गाना है नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर

0: पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर चूल्हा।

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घास तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

चार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी, रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी। बम बम बम बम बम बम बम बम बम।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं, क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि

सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोता है जो कहती है कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोता है जो कहती है कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज है कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं, पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखा नहीं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं, और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है, और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगो छो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा, और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रास्ता जो कुछ नजर है

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात ना मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं ना कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो मेंबर ने ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष

0: जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: MSMEs have actually benefited.
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
3: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
4: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
5: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग

0: को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
2: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: लग रही हो?
2: जी
1: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में, वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
2: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
1: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहाँ इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
2: बिल्कुल, ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
1: हाँ।
2: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
1: हाँ,
2: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
1: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और सावन के की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
1: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
2: बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
1: संबंध खराब हो जाते हैं
2: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
2: बिल्कुल,
1: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान के कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
2: बिल्कुल।
1: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
2: बिल्कुल
1: है,
2: उसकी आप जांचें उसे परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
1: रखना पड़ता
2: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है।

0: बिल्कुल।
1: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे 1 से 21 होना।
0: अरे, 1 से 11 होना तो हमने सुना
1: हाँ,
0: है,
1: ये अलग
0: लेकिन एक
1: है।
0: से 21 होना और भी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए इस पर ही हमारे श्रोता, हमारी सखियों और सखा इस पर विचार भेजेंगे अपने,
1: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं।
0: देखते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
0: जो
1: जो
0: याद
1: हमें
0: रह
1: बिल्कुल
0: जाती
1: याद रह
0: हैं।
1: जाती है, तो उसके
0: और
1: बारे
0: कई
1: में
0: बार
1: बताएं।
0: हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब ये छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों
1: जी
0: की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक
0: हाँ,
1: दूसरे के बारे में
0: लेकिन
1: जानना।
0: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखे, है ना,
1: हाँ
0: कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने
1: जी
0: क्या शरारत की, आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: ये आप लिख सकते हैं
1: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप
0: बचपन।
1: किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का
0: हाँ,
1: बचपन,
0: या
1: कुछ भी
0: आपके
1: बता सकते
0: पड़ोस के
1: हैं।
0: बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है, उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात
0: इनके
1: करेंगे।
0: बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन,
1: को एंजॉय, ओ आनंद उठाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: चलें करें।
1: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत। सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की
1: जी
0: फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति
1: बिल्कुल
0: के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं।
1: जी
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे हम किस
1: जी
0: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की
0: हाँ,
1: चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा
1: ऐसे
0: आपने
1: हादसे हो जाते हैं।
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है
1: बिल्कुल
0: पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे,
1: जी
0: लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
1: जी
0: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
1: बिल्कुल
0: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत

0: बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में, तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरे नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं।
1: हाँ,
0: इस कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: में
1: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती, आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती, अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी।
1: जी, और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था।
1: जी, और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही
0: अरे
1: थी,
0: हाँ,
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए,
0: हाँ
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके
0: सही
1: के।
0: कहा। हाँ हाँ
1: जी
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल, और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है, और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था, और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला

0: मीका खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी
1: जी
0: माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस
1: जी
0: बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई।
1: जी
0: चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो आरती तुम चौंक गई ना
4: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
0: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते और अब सुनते हैं गीत।
1: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमा

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं, पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई। और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखती है कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत ये धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चरपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चरपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया।

0: था,
1: हाँ
0: लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस
1: अरे
0: समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई, और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार
0: जी
1: हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं
0: डर
1: वो डर
0: जाते
1: जाते
0: हैं।
1: हैं ना।
0: जी
1: हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वही दोनों बातें बता रही
0: अच्छा।
1: है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया, और उसके
0: ओहो।
1: कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं, और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए, और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का
0: जी
1: करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल।
1: सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे,
0: अरे
1: 1 रुपए का,
0: बहुत।
1: 50 पैसे का सिक्का, या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी
0: जी
1: कई
0: बिल्कुल
1: बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं।
1: हाँ शरारतें
0: जी
1: भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है,
0: जी
1: और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी, और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे, क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
1: शरारते और तांडव हो जाता है एक तरह से
0: हैं।
1: सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना
0: बिल्कुल यही
1: हमारे
0: करते हैं ना कि फिर
1: लेके
0: सबको मत लेके जाओ, एक आध सिर्फ एक को
1: जाओ और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है
0: कि
1: आरती।
0: हमें नहीं लेके जाया जा
1: हाँ
0: रहा
1: हमें
0: है।
1: नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे
0: जी
1: क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके, तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर
0: ओहो।
1: उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि
0: जी
1: वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
0: कभी
1: नहीं
0: कभी
1: दिया,
0: डांट भी पड़ी होगी, कभी
1: हाँ
0: कभी मार भी
1: मार भी
0: पड़ी
1: पड़ी
0: होगी।
1: होगी।
0: जी अच्छा
1: हाँ
0: मजाक नहीं, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने।
1: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब कल परसों में छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है। आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानती।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था।

0: गांव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा, भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
1: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं, घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
0: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
1: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना, अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
1: हाँ,
0: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
1: हाँ हाँ, क्यों
0: तो
1: नहीं,
0: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
0: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार। तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
1: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है, 1 और 1 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब दो चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है?
1: हाँ।
0: और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये।
1: हाँ।
0: पुराना ही मुहावरा है।
1: हाँ,
0: लेकिन
1: थोड़ा,
0: हमने सुना कम है।
1: हाँ,
0: ये प्रयोग कम होता है,
1: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है, 1 से 21 होना,
0: जैसे
1: तो
0: कि
1: मतलब
0: 1 है 1 से सीधे हम उछल के 21
1: बन
0: से
1: गए।
0: पहुंच गए।
1: हाँ,
0: यानी कि उन्नति कर ली हमने।
1: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना। व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
0: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे। और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल। और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हैं हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
1: हाँ।

0: गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं, और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
1: जी बात तो सही कही
0: तो देखिए,
1: आपने
0: हमारे
1: जी
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने,
1: अच्छा
0: हर मायने
1: मायने
0: में श्रेष्ठ हो,
1: जी
0: तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एक से
1: जी
0: 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत,
1: जी
0: उसमें
1: शरारत
0: भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने
1: अच्छा
0: बच्चों से कहा कि
1: हाँ
0: पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन
1: ये
0: में किया
1: अक्सर ऐसा
0: करते
1: होता
0: थे।
1: है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक
0: जी
1: हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं।
0: जी
1: एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था। वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी ये
0: वाकई
1: लिखी
0: बहुत
1: हैं,
0: आज मन
1: और
0: खुश
1: आज वो
0: हुआ।
1: एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट,
0: हाँ, अच्छा
1: सोचिए।
0: आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो
1: जी
0: बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां, मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसें और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका
2: जी। थैंक यू
1: तनिष्ठा। कैसा लग रहा?

0: रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
1: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले
0: जी।
1: उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
0: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा
1: हाँ जी
0: है ना, फिर
1: हाँ जी।
0: 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन
1: वाओ,
0: 1955।
1: यस, मुझे पता भी नहीं है वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की डॉक्टर रखमाबाई जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
0: जी,
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
0: जी जी,
1: हम लोग मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया।
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि वहां से मुझे हर चीज जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
1: बिल्कुल कि
0: वो युवाओं
1: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है,
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में

0: मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था
1: बिल्कुल
0: हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या
0: करूं।
1: बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखाया,
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे। और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस, और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हाँ,
0: चला गया। सुनते हैं
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने
0: बिल्कुल
1: इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी दैट
0: उस समय,
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये एक क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हम हमारी
0: बिल्कुल,
1: ख्वाहिश है।
0: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू आईआईटी के जो फेस्टिवल्स थे फिर बिट्स पिलानी में सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे कहा जब मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कॉम्पिटिशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा
0: हमारे तो
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, हाँ। इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट

0: वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग
1: विजन
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की
0: गया
1: जो एकेडमिक्स
0: अच्छी
1: में जा रही
0: खासी
1: थी
0: मतलब
1: क्योंकि
0: साइंस की जो है बैंड बज गई
1: आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा,
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह, जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शंस
0: तो
1: थे टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब
1: तब तक तो
0: तक
1: काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे
0: तो वो
1: थे
0: फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने
1: तो वो
0: देंगे
1: सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रांगेट्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा,
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: मजा आ रहा
0: क्योंकि
1: है मुझे
0: पापा,
1: सुन
0: हाँ पापा ने
1: के
0: ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली
1: हाँ।
0: तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहां पढ़ो मत
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो
1: फिर मामला टल गया
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू वाइल यू कीप मेकिंग

0: प्लान्स।
1: राइट
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं, बट
1: उस फिल्म
0: अगेन
1: का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है। और
1: लेकिन ये बन गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था।

0: और
1: लेकिन ये बन
0: ये
1: गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: ओहो
0: हाँ,
1: वाह
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम
0: हाँ,
1: करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है, नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह क्या प्यारी बात
0: तो
1: कही आपने।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ, और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे,
1: वाह
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था,
1: क्या बात है क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते
0: जा
1: हैं।
0: हौर ता हबे।
1: वाह कितना सुंदर ये वाक्य
0: या
1: है। यहां एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप
1: हूं।
0: हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ
0: अलाउद्दीन
1: कि
0: खान साहब का,
1: वो बजा सकते हैं माता
0: या
1: सरस्वती शारदा, जिसका
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और
0: यस
1: वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए
0: यस
1: जयदेव जी के पास जाती है
0: बिल्कुल
1: और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल
1: ये सुनते हैं। ये
0: हाँ
1: समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के
0: या
1: संस्थापक, और पंडित रविशंकर जी
0: शंकर
1: को।
0: जी को। हाँ
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ। और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं, वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं। जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी,
0: इससे पहले बना चुकी थी।
1: इससे पहले हाँ। और
0: नवाज थे उसमें?
1: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है।

0: तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में।
0: ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में?
0: मतलब
1: वेनिस
0: सुपरनैचुरल
1: में
0: स्टोरी थी।
1: सुपरनैचुरल।
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी। मैंने
1: राइट।
0: सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर ही हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
1: अभी
0: पता नहीं, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
1: बाबा
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ,
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह के फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: वो कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें

0: एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों,

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी
0: है।
1: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म।
0: ऑडिशन से मिली थी?
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन

0: मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिप सिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का. एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर. तो मैंने वही पे स्कोर किया
1: क्या बात
0: कि
1: है।
0: और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था. एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म.
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके
1: अच्छा

0: নয় তোমার নয়, তোমার নয়, তোমার নয়।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खड़गवा, रामेश्वरपुर, पंडोपारा, झींगा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 22 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया,

0: रामपुर, कनकपुर, चिनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, बेनई, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये लोटा पानी, धुमाडाण, श्री टोली, उपका पानी, साजा पानी, कुदरा झरिया, सोनार पहरी, बहमा, बड़नी झरिया, जुमे केला, छेरा घोघरा, बटई केला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 120 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पीड़िया, सुईयारा, बोतली, सेंद्री पाली, कलमी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमा टिकरा, नवापारा, झुनकी डी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटा झरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायली खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोठ।

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अमृत धारा। इसमें आज हम सुनेंगे आयुर्वेद की उपचार पद्धति पंचकर्म, कब, क्यों और किसके लिए, इस विषय पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक दुबे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत।

अमृतधारा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। ये सिर्फ रोगों का उपचार नहीं है बल्कि सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाने की भी एक पद्धति है। बहुत सारे हमारे शरीर के दोषों से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं

0: और उसका इलाज भी आयुर्वेद में कई प्रकार से किया जाता है। आयुर्वेद की इलाज और उपचार पद्धति की एक बहुत ही प्रमुख उपचार पद्धति है पंचकर्म, और उसी से जुड़ा हुआ एक भाग है बस्ती। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने विषय लिया है आयुर्वेद की उपचार पद्धति पंचकर्म, कब, क्यों और किसके लिए। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं इस अंचल के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक दुबे। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद सुप्रिया जी। आकाशवाणी बिलासपुर के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, अभी का समय, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसा हमारा जीवन बदल रहा है, हमारा खान पान अनियमित हो रहा है, जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, बहुत सारे नए प्रकार के रोग हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इसी दौरान आयुर्वेद की जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म, इसके संदर्भ में भी सोशल मीडिया और बहुत सारे जो सूचना तंत्र, उसमें बाढ़ सी आ गई है और बहुत सारे ऐसे केंद्र बन गए हैं, वेलनेस सेंटर बन गए हैं, जहां पर लोग अपने मनमाने ढंग से जाकर पंचकर्म ले रहे हैं, चिकित्साएं करवा रहे हैं, ये जाने बिना कि ये वास्तव में क्या है, किसके लिए है और किसे इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसी विषय पर विस्तार से बातें करते हैं, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि पंचकर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं अपने श्रोताओं को विस्तार से बताना चाहूंगा। पंचकर्म जैसा कि एक शाब्दिक रूप से दो अगर इसका संधि विच्छेद करें तो पंच मतलब पांच और कर्म मतलब क्रिया। पंचकर्म वास्तव में पांच ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम सभी चिकित्सक अपने उपचार पद्धति को अपने मूल स्थिति तक ले जाते हैं।
0: जी।
1: तो यूं कहें कि हमारे शरीर में जो कुछ भी हम बाहर से ऊर्जा लेते हैं, प्राण या ऊर्जा लेते हैं, वो हमारे शरीर के पांच प्रविभागों में जाके अलग अलग जगहों पे पोषण को प्रदान करती है। तो ये पांच जो हमारे प्रविभाग हैं, उसको आयुर्वेद की भाषा में पहला प्रविभाग उसको कोष्ठ कहते हैं, जिसको कि मुख्य रूप से मुख से लेके मलद्वार ऐसी हिस्से को हम कह सकते हैं। दूसरा उसका जो प्रविभाग है उसको हम लोग मार्गस्थ रस कहते हैं, मतलब पोषण जो शरीर में सब जगह पहुंचाया जाता है हर कोशिका के पास, उसको मार्गस्थ रस कहते हैं। दूसरा प्रविभाग जो पोषण जाके हमारे धातुओं में स्थिर होता है उसको हम लोग शाखा प्रविभाग कहते हैं। तीसरा प्रविभाग जहां पे हमारी संधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम कोई क्रिया को संपादित करते हैं उसको हम लोग उपांग या संधि कहते हैं। और चौथा प्रविभाग जहां से हम अपने मूल कर्म को करते हैं जिसको हम लोग अंग कहते हैं, मनुष्य षडंग वाला प्राणी कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में हमारा पोषण पांच प्रविभागों में बढ़ जाता है, कोष्ठ, मार्गस्थ रस, शाखा, उपांग और अंग। इन पांच स्थानकों में अगर हम पोषण सही तरीके से प्राप्त करते रहते हैं तो हमारा उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन कई बार ऐसा कारण आता है कि कुछ आहार से, कुछ विहार से, कुछ विचार से, कुछ आचार से, कुछ ऐसे मल या यूं कहिए विकृत ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इन विकृत ऊर्जा को इन पांच अलग अलग स्थानकों से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे दूर किया जाए और पुनः प्राकृत स्थिति को स्थापित किया जाए, इनके लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको हम आयुर्वेद की भाषा में पंचकर्म कहते हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, इस पंचकर्म के भाग कौन कौन से हैं? जैसे आपने पांच भाग तो बता दिए, लेकिन जो क्रियाएं होती हैं इसमें वो कौन कौन सी हैं?
1: जी जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने अभी स्वस्थ की स्थिति में शरीर के पांच प्रविभाग बताए, तो इन पांच प्रविभागों में अलग अलग विभागों में गए जो हमारे विकृत ऊर्जा या मल है उनको निकालने के लिए जो पहला प्रविभाग जिसको हम मुख से लेके नाभि या आमाशय कहते हैं, उस स्थान में अगर कोई मल गया है और उसको निकालना है तो जो क्रिया हम करते हैं पंचकर्म का, उसको हम लोग बमन कहते हैं। और ऐसे ही नाभि से लेके मल द्वार और हमारे मार्गस्थ रस से जो जुड़ा प्रविभाग है उसमें अगर कोई मल गया है तो उसको निकालने के लिए जो क्रिया करते हैं, जो पंचकर्म करते हैं, उसको हम विरेचन कहते हैं। और हमारी जो धातुएं हैं जिनको हम शाखा प्रशाखा कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई मल चला गया है और उसको निकालना है तो उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसको हम शिरोविरेचन या नस्य कहते हैं। और ऐसे ही जो हमारे शरीर की मर्मास्थि संधि या उपांग जिनके माध्यम से हम कार्य को संपादित करते हैं, अगर उसमें कोई मल चला गया है तो उसको निकालने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसका नाम है आस्थापन बस्ती। और जो हमारे शरीर के अंग है जिनके माध्यम से हम जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम करते हैं, गाना चाहते हैं तो गाते हैं, बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं, दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ते हैं, इन सब के लिए अलग अलग धातु लगती है जिनको हम अनुबंधित धातु कहते हैं। तो अंगों के माध्यम से जब हम काम करते हैं और वहां पे कोई विकृति पहुंच जाती है और उसकी मल को निकालना चाहते हैं, तब इसके लिए जो हम पंचकर्म के उपाय लेते हैं।

0: ते हैं, उसको हम लोग अनुवासन वस्ती आचार चरक के इसमें और रक्त मोक्षण आचार सुतुष्ट के सिद्धांत से हम इसको कहते हैं।
1: तो ये इस तो एक सामान्य आदमी के लिए याद रखना और समझने के लिए थोड़ा सा कठिन होगा
0: जी।
1: तो मैं थोड़ा सा और सरल ढंग से जानना चाहूंगी कि जैसे आपने वमन कर्म के बारे में बताया
0: जी,
1: तो ये किस प्रकार के दोषों के लिए रहता है?
0: वास्तव में हमारे जो नाभि से ऊपर के हिस्से हैं, जिसको हम आमाशय या ऊर्ध्व शरीर कहते हैं, जिसमें कि हमारा पूरा हार्ट, लंग, ये सारा एरिया आ जाता है, इसको आयुर्वेद में कफ दोष का स्थान कहा गया है। तो कफ दोष से संबंधित होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें विशेष तौर पर जो क्रिया की जाती है वो वमन के माध्यम से कफ दोष को शरीर से बाहर निकाला जाता है।
1: जी जी।
0: इसी तरीके से जो हमारा दूसरा उपाय विरेचन है, वो वास्तव में हमारे पित्त दोषों के लिए विशेष तौर पर, जो हमारे शरीर में परिवर्तन करने वाले दोष हैं, परिवर्तन करने वाली क्रियाएं हैं, जब वो बिगड़ जाती हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम विरेचन रूपी क्रिया कराते हैं। और ऐसे ही जो सिरो विरेचन है, जो हमारे शाखागत स्थिति में जो धातुओं के अंदर जो मल चला जाता है उनको निकालने के लिए हम सिरो विरेचन या नस्य रूपी क्रिया कराते हैं। और जो हमारी वायु है, जो कि मतलब हमारे शरीर में सारी गतियां और सारे पोषण को यहाँ वहां पहुंचाने का कार्य करती है और शरीर को बाहर और अंदर सब जगह जोड़ के रखती है, इस वायु की अगर विकृति हो जाती है तो इसके माध्यम से जब हमको उपाय करना होता है तो हम आस्थापन और अनुवासन वस्ती रूपी उपाय करते हैं।
1: और रक्त मोक्षण कर्म क्या है जो आपने बीच में कहा?
0: जी जी, आचार्य सुश्रुत जो कि एक मतलब ऐसे हमारे आचार्य हुए जिनका काम था कि उन्होंने हमारे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से बेसिकली देखा, तो उन्होंने देखा कि रक्त हमारा एक ऐसा हमारे शरीर की धातु है जो हमारे सूक्ष्म अर्थात मन बुद्धि अहंकार और स्थूल अर्थात हमारा पांच भौतिक शरीर दोनों को एक लय में जोड़ के हम कोई कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो हायर फंक्शन है वो हमारे मतलब फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, इसको हम लोग हायर फंक्शन को वृत्ति कहते हैं और शरीर से जो काम करते हैं उसको वेग कहते हैं। तो वृत्ति को वेग से जोड़ के शरीर से, वाणी से और मन से जो कार्य किया जाता है इसको हमारा विशुद्ध रक्त जो है वो नियंत्रित करता है। तो अगर रक्त अच्छा है तो हमारा शरीर जो है सही शारीरिक, मानसिक और जो है बौद्धिक क्रियाएं कर पाएगा। तो रक्त मोक्षण हमारे इस वृत्ति के स्तर पर रक्त को शुद्ध करता है, जिससे कि एक मनुष्य सोशल, स्पिरिचुअल और जो हमारे सराउंडिंग की वेलबींग के साथ जो अपनी क्रियाएं करता है वो इसी रक्त के शुद्धिकरण के माध्यम से करता है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही गूढ़ बातें आज समझ में आ रही हैं कि पंचकर्म कितनी गहराई से हमारे शरीर के एक एक हिस्से से, उसमें होने वाले विकारों से, दोषों से, उसके क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मैं जानना चाहूंगी कि ये दोषों से ही जुड़ा है या स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करवा सकते हैं?
0: जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं पहले अपने श्रोताओं को पंचकर्म की कुछ सरल चीजें बताना चाहूंगा। पंचकर्म वास्तव में आयुर्वेद की चिकित्सा का सिद्धांत है
1: जी।
0: अर्थात पंचकर्म दो तरीके का होता है। पहला पंचकर्म जिसको हम लोग कर्म रूपेण पंचकर्म कहते हैं, जिसमें कि हर चिकित्सक प्रतिदिन जो भी दवाइयां देता है वो पांच विधियों से ही काम करती हैं, कुछ वमन की विधि से, कुछ विरेचन की विधि से, कुछ सिरो विरेचन की विधि से, कुछ जो है अनुवासन की विधि से, कुछ आस्थापन की विधि से, इसको हम लोग कर्म रूपेण पंचकर्म कहते हैं। ये लगातार चिकित्सा में दी जाने वाली औषधियां इसी पांच के माध्यम से काम करती हैं। दूसरा जो पंचकर्म होता है उसको हम लोग विधि रूपेण पंचकर्म कहते हैं। विधि रूपेण पंचकर्म वो है जब हमारे शरीर में इतने ज्यादा मलों का संग्रह हो जाए कि लगातार मल बनते रहें और शरीर के पूरे पांच को स्थानकों में मल लगातार फैल रहे हों, जिसको आयुर्वेद की भाषा में प्रभूत और बहुल, मतलब बार बार बनना और ज्यादा मात्रा में बनना। ऐसी मात्रा में अगर टॉक्सिन्स, अगर हमारे मल शरीर में बन रहे हैं तो उनको निकालने के लिए हमारे में हम लोग विधि रूपेण पंचकर्म कराते हैं, अर्थात इन टॉक्सिन्स को औषधियों के प्रयोग के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में बने हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उनकी मात्रा शरीर में कम हो जाए और बीमारी का जो स्तर है वो तुरंत जो है नीचे आ जाए। आपने एक चीज पूछा कि मतलब कौन से लोग पंचकर्म करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उस बात को पूरा करना चाहूंगा कि पंचकर्म भी दो तरीके का होता है। एक जो है नित्यग स्थिति का पंचकर्म, एक आवस्थिक स्थिति का पंचकर्म। अर्थात हम लोग मनुष्य हैं और हमारे ऊपर बाहर की दुनिया का प्रभाव पड़ता है, तो बाहर की दुनिया के प्रभाव से अर्थात ऋतुओं के प्रभाव से हमारे शरीर में कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं। तो आयुर्वेद इसको लोक पुरुष साम, नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप कहता है। तो जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो हमारे शरीर में वायु दोष की वृद्धि हुई, तो इसमें हर व्यक्ति अपने अच्छे कुशल चिकित्सक की देखरेख में अपनी

0: स्थिति का आकलन करा के नित्य रूपी जो पंचकर्म के उपाय बस्ती इत्यादि है उसको ले सकता है। ऐसे ही जो शरद ऋतु होती है जिसमें कि हमारे शरीर में पित्त दोष की वृद्धि होती है उसमें व्यक्ति अपने शरीर का सम्यक आकलन करवा के किसी योग्य चिकित्सक के देखरेख में अपने आवश्यक होने पे अपने लिए विरेचन रूपी जो है पित्त के उपाय वहां पे जो है नित्य पंचकर्म के रूप में ले सकता है। ऐसे ही वसंत ऋतु में अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है तो वो अपने सही तरीके से अपना किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में आकलन करके आवश्यकता होने पे वो बमन रूपी अपना नित्यक पंचकर्म ले सकता है। और एक स्थिति होती है पंचकर्म की जिसको हम आवस्थिक पंचकर्म कहते हैं, मतलब हमारे पास मरीज ओपीडीज में आते हैं और वो ओपीडीज में ऐसा तो समय देख के आएंगे नहीं कि ये बसंत ऋतु है ये ग्रीष्म ऋतु है, वो तो कभी भी आते हैं। तो जब कभी भी कोई मरीज हमारे सामने आता है तो ऐसे स्थिति में हम चिकित्सक उसकी स्थिति को देखते हुए उसकी अवस्था को देखते हुए उसके लिए जो आवश्यक पंचकर्म है उसका आकलन करके उसके लिए हम पंचकर्म की प्लानिंग करते हैं अगर जरूरी हुआ तो। तो इस तरीके से हम पंचकर्म किसको कैसे लेना है किस तरीके की चीजें हैं इसके बारे में हमारी एक मतलब स्थिति हम लोग रखते हैं।
1: एक चीज तो समझ में आ रही डॉक्टर साहब कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरुषम पुरुषम बीच इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल साइंस, आयुर्वेद को इसीलिए होलिस्टिक साइंस भी कहते हैं कि हम हमेशा हर, जैसे आपने कहा कि किसको लेना है कब लेना है, तो हम चिकित्सक हर बार जब हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका आकलन करते हैं। जैसे कि हमने पोषण के अपने लेवल बताए कि हमारे 5 प्रविभाग होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं आयुर्वेद ने उसको भी लेवल और ग्रेड वाइज कैटेगराइज कर रखा है
1: जी।
0: तो पहली जो बीमारी जो पहला प्राथमिक स्तर होता है हमारी बीमारियों का उसको हम लोग विकार शब्द से लेते हैं, दूसरी जो बीमारियां होती हैं उसको हम लोग रोग शब्द से लेते हैं, और तीसरी जो बीमारियां होती हैं जो कि ज्यादा क्लिष्ट होती हैं उसको हम लोग व्याधि शब्द से लेते हैं। सामान्य लोगों में रोग व्याधि विकार ये सब एक ही लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन वास्तव में ये अलग अलग लेवल है।
1: सही।
0: तो पंचकर्म उन बीमारियों के लिए है जो व्याधि स्वरूप की है, जिनमें कि हमारे धातुओं के साथ बाहर से आए हुए मल या दोष इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि अब उन्होंने हमारे शरीर के अंदर एक नया स्वरूप बना दिया है। तो हम चिकित्सक उसके लिए हमारे जो शास्त्र में हमारी जो बुक्स में जो लक्षण दिए हुए हैं अलग अलग विकार के रोग के व्याधि के, उनका आकलन करते हुए कौन सा मरीज व्याधि के स्तर पे आया है, कौन रोग के लेवल पे आया है, कौन विकार के लेवल पे आया है, तो किसमें पंचकर्म देना होगा किसमें बिना पंचकर्म के काम चल जाएगा इसका आकलन करते हैं और फिर यथा योग्य स्थिति अनुसार हम उसको पंचकर्म देते हैं।
1: देखिए कितनी बात स्पष्ट हो रही है और पंचकर्म को बिल्कुल ऐसा खेल खेल में आजकल लिया जा रहा है कि हम छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई वेलनेस सेंटर है वहाँ हम चलो पंचकर्म भी कराते हैं, फिर पहाड़ भी घूम रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह की सावधानियां हमें लेनी चाहिए यदि आप पंचकर्म यदि आपको बताया जा रहा है तो कहाँ से लें, किससे लें और क्या क्या सावधानियों के साथ लें।
0: जी डॉक्टर सुप्रिया जी, आप जो इस प्रश्न को कर रही हैं आपके माध्यम से मैं पूरे सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि श्रोताओं ये आपको बहुत ही गहराई से अपने अंतः मन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि चिकित्सा या औषध हमेशा आपके शरीर के अंदर जो मल होते हैं उनके ऊपर काम करती है,
1: टॉक्सिन्स के ऊपर
0: काम करती है। और ये चिकित्सक की दृष्टि होती है, चिकित्सक का विज्ञान होता है कि वो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के स्तर का आकलन करे और उसके अनुसार यथा योग्य औषधि की कल्पना करे। अगर उन स्थितियों का आकलन सम्यक तरीके से नहीं हुआ है, सम्यक तरीके से उन मलों के बारे में हमने सूक्ष्म गहराई से आकलन नहीं किया है, तो हम कोई औषधि या कोई उपाय अगर आपके शरीर में देते हैं तो वो औषधि उन मलों के बजाय आपके शरीर की धातुओं के साथ संपर्क बनाने लगेगी, जो बॉडी टिश्यूज हैं जिनके वजह से आपकी हेल्थ प्रिजर्व है उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ने लगेगा और इसके वजह से एक लक्षण उत्पन्न होता है जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में आतंक या व्यापद कहते हैं। हाँ, आतंक और व्यापद वो स्थितियां हैं जो हमारे पंचकर्म या हमारे शोधन के उपाय सही तरीके से नहीं करने की वजह से हमारे शास्त्र में हर जगह उल्लेखित है। तो हम चिकित्सक कभी भी किसी भी रोगी के अंदर जब तक इसका पूरा आकलन नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसको पंचकर्म एडवाइस नहीं करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये संदेश है कि जब कभी भी आप किसी पंचकर्म के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रस्तुत करें, तो हमेशा एक योग्य कुशल चिकित्सक में अपना पूरा आकलन कराएं और अगर आपके चिकित्सक के द्वारा आपके आकलन के पश्चात आपकी स्थिति बनती है तो ही आप पंचकर्म कराएं। कृपया पंचकर्म के लिए चिकित्सक पे दबाव ना बनाएं।
1: क्या बात है, तो ये बहुत सही जानकारी आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है
0: जी।

0: कि पंचकर्म एक बहुत ही प्रमुख चिकित्सा उपचार
1: बिल्कुल
0: पद्धति है आयुर्वेद की,
1: जी
0: और
1: जी
0: इसे बहुत हल्के में आपको नहीं लेना है।
1: जी
0: एक योग्य चिकित्सक से जाके पहले अपने विकारों का, अपने तकलीफों का आकलन
1: बिल्कुल
0: जरूर कराइए, फिर वही डिसाइड करेंगे, वही निर्णय लेंगे कि आपको
1: बिल्कुल
0: पंचकर्म करना है कि नहीं।
1: बिल्कुल
0: तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, और सारी बातें काफी सरलता से आपने हमारे श्रोताओं को बताई। अब एक भाग इस कार्यक्रम का बस्ती के ऊपर भी था,
1: जी।
0: क्योंकि अक्सर जो तकलीफें हैं हमारे आहार से जुड़ी हैं, हमारे पाचन से जुड़ी हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: उससे जुड़ी बहुत सारी तकलीफें हैं, और आयुर्वेद उसका कुछ बढ़िया सा उपचार देता है इन सब
1: जी
0: के
1: जी
0: माध्यम से। तो बस्ती क्या है, क्या ये पंचकर्म का हिस्सा है जैसे आपने बताया, और इसमें किन रोगों का उपचार किया जाता है?
1: मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, जैसा कि बस्ती एक शब्द है, वास्तव में पहले जो उपचार या दवा हम प्रदान करते थे, वास्तव में एक जो ब्लैडर यूज किया जाता था, जो कि ज्यादातर जो है बकरी या जो है अजा, इसके जो है ब्लैडर को ही यूज करते थे, इसलिए इसका नाम बस्ती पड़ा। और दूसरा, ये विशेष तौर पर बस्ती की जो चिकित्सा है आयुर्वेद में, जो क्रियात्मक भाव जिसको हम वायु या वात कहते हैं, उसको ठीक करने की चिकित्सा है। मूल रूप से ये कहें कि हमारे शरीर में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा वायु है वो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। इसलिए आयुर्वेद में जब रोगों का वर्गीकरण किया गया तो उसकी संख्या भी बताई गई। तो ऐसा कहा गया कि 80 प्रकार की बीमारियां वायु की वजह से, 40 प्रकार की बीमारियां पित्त की वजह से, और 20 प्रकार की बीमारियां कफ दोष की वजह से होती हैं।
0: जी
1: तो ऐसे में जो वायु को ठीक करने वाली उपाय बस्ती चिकित्सा है, उसको आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं। मतलब अगर उसके वायु के रोगों को ठीक किया जाए बस्ती के माध्यम से, तो आधी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं,
0: क्या बात है।
1: ऐसा शरीर के अंदर शुद्धिकरण हो सकता है। तो बस्ती वास्तव में इसलिए प्रमुख चिकित्सा है क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे जो जीवन शैली है उसमें वायु के विकार ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अनियमित दिनचर्या हो गई है, हम रात्रि में पूरी तरीके से अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, विचारों की स्थिति में हम लगातार चिंतन में, भय में, या इसी तरीके से परफॉर्मेंस एंजाइटी में जी रहे हैं। ये सब चीजें, काम, क्रोध, भय, ये सब वायु को बढ़ाने वाले हमारे। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे में इन भावों की वजह से आज के समय में, वर्तमान समय में, हमारी वायु के रोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए बस्ती चिकित्सा आज के समय में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। अगर वो सही तरीके से अच्छे चिकित्सक की देखरेख में ली जाए तो हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हमारे मनोरोग, या यूं कहिए हमारे पाचन तंत्र के रोग, ऐसी कई श्रृंखला हैं जिसमें बस्ती चिकित्सा अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। छोटे बच्चों से लेके वृद्ध जनों तक ये निरापद चिकित्सा के रूप में काफी अच्छे से समाज में लोगों के द्वारा वाहित की जा रही है।
0: क्या बात है। तो ये किस प्रकार की जाती है, इसके क्या प्रकार हैं?
1: जी
0: बस्ती के भी कई प्रकार हैं
1: जी
0: आयुर्वेद
1: जी
0: में, उसके
1: बिल्कुल।
0: बारे में जानना चाहेंगे।
1: आमतौर पर वस्ती के प्रमुख जो है, अगर निर्माण की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार हैं, और अगर मार्ग की दृष्टि से देखें तो इसका एक तीसरा प्रकार भी हो जाता है। निर्माण की दृष्टि से जो बस्ती बनाई जाती है, उसमें हम लोग क्वाथ द्रव्य लेते हैं, मतलब बहुत सारे औषधियों को जो डिकॉक्शन या क्वाथ की कल्पना से बनाया जाता है, उसमें अन्य द्रव्यों को मिश्रित किया जाता है, और जब इसको हम लोग गुदा द्वार से, रेक्टल एरिया से डालते हैं, तब इसको हम लोग जो है आस्थापन बस्ती कहते हैं। ये हमारे शरीर में जाके हमारे धातुओं में, मर्मास्थि संधि में, हमारे धातुओं का स्थापन करती है, और जैसे सूर्य की रश्मियाँ पानी को अवशोषित कर लेती हैं नदी से और उसको वाष्प बना के वर्षा करा देती हैं, ऐसे ही डक्टलेस एब्जॉर्प्शन हमारे रेक्टल एरिया से होता है और पूरे शरीर में इसके जो है गुण फैल जाते हैं, और इस तरीके से ये दोषों को वहां से ले आके और फिर से ये बहिर्मुख द्वार रेक्टल एरिया से बाहर निकाल देती है। तो ये आस्थापन बस्ती, क्वाथ बस्ती के रूप में, या जो है निरु बस्ती के नाम से भी जानी जाती है, काढ़े वाली बस्ती बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। दूसरी जो बस्ती है उसको स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती कहते हैं। ये अनुवासन या स्नेह बस्ती वास्तव में हमारी अनुबंधित धातु के ऊपर काम करती है, और ये स्नेह का विशेष इसमें जो है मात्रा ज्यादा रहती है, इसमें क्वाथ द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये व्यक्ति हमारे बस्ती हमारे शरीर में जाके मुख्यतः शरीर का वृंगण करती है, अर्थात धातुओं में वृद्धि ले आती है,
0: मतलब ये तेल वगैरह रहते
1: हाँ
0: हैं।
1: इसमें स्नेह का प्रयोग किया जाता है, खासकर तेल का, घृत का, और कई बार आवश्यकता पड़ने पर वसा और मज्जा का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये स्नेह बस्ती है जो पोषणदायक होती है, ये अनुवासन बस्ती कहलाती है। और एक बस्ती मार्ग के भेद से स्त्रियों में जो है योनि मार्ग में, पुरुषों में जो है मूत्र मार्ग में दी जाती है, उसको हम लोग उत्तर बस्ती कहते हैं, जो खासकर जो गर्भाशय की विकृतियां हो गई और जो है जननेंद्रियों की विकृति

0: या हैं, या इसी तरीके से जो आजकल पीसीओडी वगैरह की समस्याएं या इनफर्टिलिटी वगैरह की समस्याएं आ रही हैं, या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्याएं, ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं मूत्र मार्ग और जो है योनि मार्ग की, इसमें जो है उत्तर वस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः ये आस्थापन, अनुवासन और उत्तर बस्ती, ये तीन बस्तियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं। वैसे बस्ती के अनेक अन्य अन्य प्रयोग जैसे मात्रा बस्ती इत्यादि भी है, ये सब चीजें भी निरापद रूप से अभी प्रयोग में ली जाती है।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मन में उठता है कि जब पंचकर्म हम बोलते हैं, आपने पांच प्रकार की बातें बताई, किसी व्यक्ति को ये पांचों प्रकार ही करवाना पड़ता है या किसी के रोगों के अनुसार किसी एक प्रकार से भी काम करता है? पंचकर्म हम बोलते हैं, हम पंचकर्म करवाने जा रहे हैं, तो सबका सब कुछ एक साथ चलता है या किसी एक को भी लेके किया जा सकता है?
0: हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। श्रोताओं, मैं आपको सभी को ये बताना चाहूंगा कि जैसा हमने अपनी बातचीत में कहा कि हमारी कोई भी चिकित्सा मलों के आकलन के बाद की जाती है, तो वास्तव में हमारे शरीर में जो मल दोष हैं, उन्होंने हमारे शरीर के कितने स्थानकों में अपना प्रभाव डाला है। मतलब मुख से लेके नाभि आमाशय में डाला है, नाभि से लेके मल द्वार पक्वाशय में डाला है, या अगले चैनल्स मार्गशीर्ष में डाला है, या संधियों में डाला है, या अंगों में डाला है। इसके आधार पर निश्चित किया जाता है कि हमें कितने उपाय देने पड़ेंगे
1: जी।
0: अगर सिर्फ कोष्ठ तक है तो बमन से काम चल जाएगा, अगर कोष्ठ से मार्गस्त्रस और जो है पक्वासे तक चला गया तो विरेचन देना पड़ेगा, शाखा में चला गया तो शिरो विरेचन देना पड़ेगा, और अगर मर्मास्थि संधि तक चला गया है तो बस्ती के उपाय करने पड़ेंगे
1: जी।
0: तो ये चिकित्सक और मलों के बीच के आकलन की स्थिति है कि कितने उपाय एक बार में देने पड़ते हैं।
1: जी जी जी, बहुत सही। और एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें पंचकर्म नहीं दिया जा सकता, जिन्हें नहीं कराना चाहिए?
0: जी, ये भी बहुत ही आपका बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। साथियों, अगर आपके शरीर में आपकी मलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप शोधन के योग्य हैं, आयुर्वेद की दो चिकित्साएं हैं समन और शोधन, मतलब आसानी से मुख मार्ग से सिर्फ औषधियों के उपाय से ठीक हो जाए, इसको समन कहते हैं, और शोधन जो कि हम पंचकर्म जिसकी बात कर रहे हैं, तो कई बार हमारे बीमारियां सिर्फ विकार और रोग मतलब प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर होती हैं, इसमें कोई भी हमें पंचकर्म का सीधा सीधा विधि पूर्वक प्रयोग नहीं करना पड़ता है, कर्म रूपण कार्य से हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन अगर इसमें जो है ऐसी स्थिति में हम पंचकर्म के लिए जाते हैं तो हमारे शरीर की धातुओं के ऊपर उस जो है औषधि का प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारा जो है बल हानि या हमारे में व्यापद या आतंक की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये स्थिति का आकलन किए बिना हमें पंचकर्म नहीं कराना चाहिए, और खासकर ऐसी स्थितियों में जबकि हमारे शरीर में कोई ऐसी बल की हानि चल रही हो और हमारा शरीर का बल बहुत कम हो गया हो, ऐसे में कोई ऐसा शोधन का उपाय जिसमें कि हम अपना शरीर हमारा उस बल हमारा बल उसको सहन ना कर सके, इसमें भी जरा अवस्था इत्यादि जो है उससे हमको बचना चाहिए। गर्भिणी इत्यादि हैं जिनको कि हमको बहुत तीक्ष्ण शोधन या संशोधन से बचाना चाहिए, बालक हैं जो कि मृदु हैं उनमें भी हम तीक्ष्ण संशोधन से बचते हैं, तो ऐसी स्थितियां जो है वो पंचकर्म के योग्य नहीं रहती हैं, और अगर योग्य होती हैं तो चिकित्सक की देखरेख में विशेष परिस्थितियों में उनमें क्या उपयोगी है वैसा आकलन करके हम उनको पंचकर्म के लिए ले जा सकते हैं।
1: टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, डिटॉक्स, ये शब्द आजकल बड़ा प्रचलित
0: जी,
1: है
0: जी जी,
1: तो क्या पंचकर्म केवल डिटॉक्स है?
0: डॉक्टर सुप्रिया जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि डिटॉक्स एक बहुत ही छोटा सा शब्द है। डिटॉक्स हमारी फिजिकल बॉडी को क्लीन कर सकता है, लेकिन अगर हमने पंचकर्म जैसी चिकित्सा को किसी कुशल योग्य चिकित्सक अच्छे चिकित्सालय के अंतर्गत लिया तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके अलावा शरीर के अलावा हमारी इंद्रिय, इंद्रिय के अलावा हमारा मन और मन के अलावा हमारी आत्मा तक हम अपने पोषण को पहुंचा सकते हैं, और एक मनुष्य जिसको फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग की कंडीशन में होना चाहिए वहां तक पहुंचा के हम सच्चित और आनंद की स्थिति प्रदान कर सकते हैं।
1: तो ये तो आज पंचकर्म के संदर्भ में इतने विस्तार से और इतने सरल ढंग से डॉक्टर विवेक दुबे ने आज हमें बताया कि हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए
0: जी।
1: और ये मनमाने ढंग से इस महत्वपूर्ण उपचार पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके दुष्प्रभाव आतंकी जैसे होते हैं, बहुत ही खतरनाक सा शब्द है, यदि इसके दुष्प्रभाव हुए तो वो बड़े भयानक होंगे, इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये हमारे मनमाने ढंग से उपयोग किए जाने वाली चीज नहीं है, कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में और देखरेख में ही ये कार्य होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: साथियों, मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप आयुर्वेद आपकी अपनी चिकित्सा है, भारत की अपना चिकित्सा विज्ञान है, निरापद चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन हमेशा एक कोशिश करनी है कि चिकित्सा डिमांड पे ना की जाए।

0: चिकित्सा आवश्यकता अनुसार की जाए, योग्य चिकित्सक की देखरेख में की जाए। और चलते चलते एक शब्द कहना चाहूंगा, छोटा बड़ा जो काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा अच्छा ना उसका परिणाम होगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना, धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, और हम भी अपने श्रोताओं के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और संतुलित जीवन शैली जिए, और जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सही चिकित्सा के माध्यम से अपना इलाज करवाएं और स्वस्थ रहें। आज के अमृतधारा कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है इस अंचल के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक दुबे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब, शुक्रिया।
0: धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी, मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आप सभी के साथ अपने शब्द साझा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम अमृत धारा भी हम सुन रहे थे, जिसमें हमने सुनी आयुर्वेद की उपचार पद्धति पंचकर्म कब क्यों और किसके लिए विषय पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक दुबे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं महिला बहनों का कार्यक्रम महिला सभा।

जीवन के हर रंग को अपने स्नेह, साहस और संघर्ष से खूबसूरत बनाने वाली हमारी प्यारी बहनों को हमारा नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें स्वस्थ और खुशहाल होंगी और दिन भर की थका देने वाली दिनचर्या के बाद इस वक्त गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ हमारा कार्यक्रम भी सुन रही होंगी। सच बहनों, घर, ऑफिस, बच्चे संभालते संभालते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सच बहनों, माँ होना सरल नहीं है। माँ ईश्वर की बनाई हुई अनुपम कृति है और एक स्त्री के लिए माँ बनना गौरवपूर्ण अनुभूति है, एहसास है। बहनों, एक नन्ही सी जान जब इस दुनिया में आती है ना, तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और जिम्मेदारियाँ भी लेकर आती है। हम उसके लिए सबसे अच्छे कपड़े, खिलौने लाते हैं, लेकिन बहनों, क्या आप जानती हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या है? बहनों, उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा है माँ का दूध। डॉक्टर, वैज्ञानिक और पूरी दुनिया सहमत है कि माँ का दूध सिर्फ आहार ही नहीं, बच्चे का पहला टीका है, उसका सुरक्षा कवच है। बहनों, ये नवजात शिशु का एक ऐसा आहार है जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े न्यूट्रिशनल पाउडर और महंगे सप्लीमेंट्स भी फीके पड़ जाते हैं। बहनों, शिशु के जन्म के बाद जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है ना, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे टीका होता है। इसमें वो जादुई एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बीमारियों, इन्फेक्शंस और एलर्जी से उम्र भर बचाती हैं। मैंने शुरू के 6 महीने बच्चे को ऊपर की कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। माँ का दूध ही बच्चे की प्यास भी बुझाता है और भूख भी, और लगभग 2 साल की उम्र तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। मैंने स्तनपान सिर्फ बच्चे की ही नहीं, माँ की सेहत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। स्तनपान कराने से माँ का वजन भी कंट्रोल में रहता है और कई तरह की बीमारियों से भी बची रहती हैं। माँ बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है। बहनों, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है एक स्वस्थ शिशु से, और स्वस्थ शिशु की पहली पहचान है माँ का दूध। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक

0: विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, एक सतत सहयोग प्रणाली बनाएं। आइए बहनों, इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम सभी ये संकल्प लें कि हर माँ को सम्मान, सहयोग और ऐसा वातावरण देंगे जहाँ वह बिना संकोच के अपने शिशु को स्तनपान करा सके। और बहनों, अपनी बातों को देते हैं यहाँ पर विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: बहनों, आइए चलते हैं हमारे आज के अगले क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति की ओर और सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़। आइए बहनों, मिलते हैं श्रीमती शुभदा जोगलेकर जी से। बहनों, मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली और राहत तो लेकर आता है, लेकिन कई बार अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ जैसी गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर देता है। कुछ घंटों की तेज बारिश में सड़कें नदी जैसी बन जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है, बिजली और यातायात बाधित हो जाते हैं और सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ता है। बहनों, ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय सही जानकारी और समय पर की हुई तैयारी हमारे सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं पर्यावरणविद श्रीमती शुभदा जोगलेकर जी, जो हमें बताएंगे कि अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ के दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमारा आज का विषय है अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़, तो सबसे पहले शुभदा जोगलेकर जी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
8: नमस्कार अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुभदा जी, सबसे पहले तो हम अपने आज के इस विषय पर ही आते हैं। आजकल शहरों में जलभराव की घटना तेजी से बढ़ रही है और इसके मुख्य कारण क्या है?
8: देखिए, शहरी जलभराव जैसा आपने कहा समस्याएं आजकल बढ़ गई हैं, और आपका एक और वर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, शहरी जलभराव।
0: हाँ।
8: क्योंकि जब हम नोटिस करते हैं, हम गांवों में चर्चा करते हैं तो हमको पता चलता है बारिश होने के बावजूद गांवों में कभी भी जलभराव की समस्या नहीं आ रही है
0: जी।
8: लेकिन शहरों में जलभराव की समस्या के बहुत सारे कारण हैं अगर हम देखें तो। सबसे पहला कारण ये नालियों का जाम होना
0: जी,
8: और नालियों के जाम होने के पीछे नागरिक सबसे बड़ी वजह है।
0: हम खुद ही जिम्मेदार हैं
8: क्योंकि हम बेतरतीब तरीके से नालियों में कचरा डंप करते हैं, खास करके प्लास्टिक की पन्नियां, बॉटल्स, जिनकी वजह से नालियां जाम होती है, पानी रुक जाता है। और इसको दूर करने, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो तो डिकम्पोजेबल नहीं, वो खराब होता नहीं है
0: जी।
8: तो वो जमा हो के नाली को बंद कर देता है और वहां से पानी बहता नहीं जो सड़क पे आ जाता है और घरों में अंदर घुसने की भीषण स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जैसे पिछले दिनों हमारे बिलासपुर में
8: 17 तारीख की बात है
0: जी,
8: जब ऐसा हुआ था कि लो लाइंग एरिया को तो छोड़िए, शहर की अच्छी पॉश कॉलोनीज में भी घरों में पानी घुस गया। तो इसका प्रमुख कारण मैं तो यही मानती हूँ कि नालियों का जाम होना, और नालियों के जाम होने का प्रमुख कारण हम स्वयं
0: जी।
8: तो हमें इस बात का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए। देखिए, आजकल गाड़ियां घूम रही हैं, कचरे की गाड़ियां कचरा कलेक्ट करने के लिए आपके दरवाजे तक आती हैं
0: जी।
8: तो हम कम से कम इतने सजग और सतर्क तो रहें कि गाड़ी आए उस समय हम अपने यहाँ का कचरा सारा उसमें डालें
0: जी।
8: इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद आप यकीन नहीं करेंगे अदिति जी, मेरे घर के बगल में एक खाली प्लॉट है, मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोग उस अपने घर के कचरे को गाड़ी में नहीं डालते
0: जी,
8: वो मेरे घर के बगल के खाली प्लॉट में डालते हैं। हम समय समय पे उसको जैसे भी नगर निगम से बुलवा के साफ करवाते रहते हैं। तो ये सतर्कता जब तक, ये अवेयरनेस, ये सजगता हमें जब तक नहीं आएगी, तब तक इस समस्या का परमानेंट इलाज तो नहीं हो सकता
0: जी, कोई समाधान नहीं
8: जी।
0: शुभदा जी, पिछले दिनों जो हमारे शहर में बारिश हुई और उसके साथ आपने बताया कि

0: निचले इलाके, तो निचले इलाके कॉलोनियों में भी पूरा पानी भर चुका था। तो घर में बाढ़ का पानी घुसने से पहले हम क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अब एक हमारे यहाँ परमानेंट समस्या हो रही है धीरे धीरे। हर सीजन में हमारे यहाँ घरों में पानी घुसने की समस्या हो रही है। तो हमको जो बहुत सारे एहतियात बरतने चाहिए, उनमें से सबसे पहले तो ये, मॉनसून के आने की दस्तक आते ही हमको ऐसी जगहों को चिन्हित कर लेना चाहिए जहाँ हम बाढ़ के आने की आशंका होते ही स्थानांतरित या स्थलांतरित हो जाएं।
0: जी,
1: अगर आपने ऐसे एहतियात बरत लिए हैं, नालियां साफ करवा ली हैं, घरों के सामने बैरिकेडिंग कर ली, पानी के अंदर आने के जो सोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया है, तब तो फिर हमको घर ही घर में भी बाढ़ के आने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे एहतियात हैं, जैसे घर के लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाएं, कुछ एक फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रखें, खाने पीने की चीजें तैयार रखें, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम बाढ़ की आने की आशंका के साथ ही कर सकते हैं या करने चाहिए।
0: शुभदा जी, जैसे कि बाढ़ की स्थिति में हम पहले से ऐसा कोई सा क्या आपातकालीन किट है जो हम तैयार रख सकते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल है अदिति
0: जी।
1: आपातकालीन किट में हमको पहला तो प्राथमिक उपचार का सामान रख लेना
0: चाहिए।
1: उसके बाद घर के सदस्य हैं, उनको किसी को कोई दवाइयां समय पे लेनी हो तो उन दवाइयों को जोड़ लेना चाहिए। हमारे चश्मे
0: जी,
1: हमारे कुछ कैश नगद रखना चाहिए।
0: यदि छोटे बच्चे हैं
1: तो उनके लिए सामग्री, उनकी जरूरत की सामग्री, एक्स्ट्रा कपड़े, ये सब चीजें हमको वाटरप्रूफ बैग्स में भर लेने चाहिए। क्योंकि क्या है, बाढ़ आपको बता के नहीं आएगी। हालांकि मौसम विभाग हमको सूचना दे देता है, मोबाइल में हमको आजकल अलर्ट मिल जाता है कि भाई रेड वार्निंग है, येलो वार्निंग है, ऑरेंज वार्निंग है। तो ऐसे मिलते ही हमको सजग होना चाहिए और तैयारी करके रखने में कोई नुकसान नहीं। आपदा आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आपदा आने की स्थिति में हम दौड़ने लगेंगे तो वो सही स्थिति नहीं होगी। मतलब वो प्यास लगने पे कुआं खोदें वैसा है ये, कि बाढ़ आने पे हम तैयारी ना करें, क्योंकि हम तैयार रहें आपदा के लिए। जैसे जब बाढ़ की स्थिति आती है ना, तो हमने तो बहुत सारी बातें की कि हमको पैक फूड रखना चाहिए, बिस्किट्स और रेडी टू ईट फूड होना चाहिए, मतलब हम जिसको तुरंत खा सकें, ऐसा ड्राई फ्रूट्स रखने चाहिए थोड़े से ऐसे। लेकिन उसके साथ ही हमारे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कागज पत्र दस्तावेज हैं, उनको भी हमको बहुत संभाल के एहतियात से वाटरप्रूफ बैग में रखना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पर ऊपर रखना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके बैंक के पासबुक्स हैं, चेकबुक्स हैं, तो इन सब चीजों को हमें, आपके एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, तो इन सारे दस्तावेजों को हमको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है
0: पहले।
1: हाँ, और इसके साथ ही कुछ कैश, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा कैश साथ में रखें, छोटे नोट
0: जी,
1: क्योंकि हमको इन छोटे नोटों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो साथ में रखें और तभी हम मतलब बाढ़ का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत भीषण स्थिति होती है।
0: शुभदा जी, जैसा कि घर में सभी उम्र के लोग रहते हैं ना, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, कई बार गर्भवती स्त्रियां भी रहती हैं, तो हमें क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए?
1: जी अदिति, ऐसा करना चाहिए कि ये लोग जो बहुत वल्नरेबल हैं, यानी जो बहुत जिनको ज्यादा कष्ट हो सकता है,
0: उनको ज्यादा देखभाल की भी
1: जरूरत होती है, तो ऐसी गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, इनको सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पे, दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, या अपने ही घर में ऊपर अगर जगह हो तो ऐसे इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए। और उनके स्वास्थ्य का, उनके लिए जरूरी सारा सामान उनके साथ हो, ये ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों के खाने पीने की चीजें, वो भी सेहतमंद फूड, ये ध्यान भी रखना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति में बाढ़ जिस खाने के पदार्थ को लग गई है वो हम ना खाएं। पीने के पानी की, शुद्ध पानी की व्यवस्था करें, जैसे पानी उबाल के पिए, क्लोरीन की गोलियां हैं पानी में डालें, उनके बाद पानी को साफ करके, फिल्टर करके, उबाल के हम भी पिए, हमारे घर वालों को भी पिलाएं। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से हम कोशिश करें कि हम स्वास्थ्य वर्धक काम ही बाढ़ के समय भी करें और स्वस्थ रहें।
0: जी शुभदा जी, बाढ़ के बाद जाहिर सी बात है कि वातावरण में नमी के कारण कीटाणु, मच्छर और कई तरह की संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इनसे हम कैसे बचाव करें अपना और अपने परिवार का?
1: कोशिश करें, बाढ़ का पानी घर के अंदर अगर आ गया है दुर्भाग्यवश, तो पानी के निकल जाने के बाद में घर को सूखा रखने की व्यवस्था करें।
0: जी,
1: हवादार खिड़कियां सारी खोल दें, हवा आने दें, पंखे चला दें ताकि वो सूखे। आजकल सिलिका जेल या ऐसी कोई चीजें आती है जिनको हम अलमारियों में डाल सकते हैं, तो उसकी वजह से नमी सोख लेती है वो चीजें।
0: अच्छा।
1: न्यूज़पेपर्स बिछा दें जगह जगह पर, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोखता कागज होता है, तो उसमें आपके कपड़ों की नमी, बर्तनों की नमी, ये सब सोखी जाती है, जिसकी वजह से जो डैम्पनेस का भाव है वो, यानी वो जो सीलन और उसका भाव आता है, उसके लिए रूम फ्रेशनर्स इस्तेमाल करें, धूप जलाएं और कपूर जगह जगह रखें।

0: हैं,
1: जी
0: तो ये चीजें जो हैं इनका ध्यान रखें कि ये घरों में रखी गई हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जिनको कहते हैं कीटाणु जीवाणु,
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: हमको अटैक करने से हम बचे रहेंगे। हम कोविड के समय हमने किया था ना,
1: हाँ,
0: हमने कपूर रखते थे हम साथ
1: जी,
0: में
1: जी,
0: या जगह जगह घर में भी, तो कपूर की खुशबू से भी हम सूंघने से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं उनके आक्रमण से।
1: शुभदा जी, जैसा कि बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि नाली में कचरा फेंकना ही बाढ़ का मुख्य कारण है,
0: जी मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम
1: हाँ,
0: देखिए इतने समझदार पढ़े लिखे, इतनी हाई लिटरेसी, टेलीविजन पे रोज इश्तहार आता है, मोबाइल में रोज इश्तहार आते हैं कि नालियों में प्लास्टिक का कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा। हम अगर ये नहीं सीख रहे हैं तो हम क्या कर रहे
1: क्या?
0: हैं? तो हमको चाहिए कि निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से हमको जो सूचनाएं दी जा रही हैं सावधानी बरतने के लिए उनका पालन करें। हम क्या करते हैं, हम नियमों को तोड़ने में बहुत फक्र महसूस करते हैं, वो सही नहीं है। हमको नियम हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बताए जा रहे हैं, तो उन नियमों का मेटिकुलसली पालन करें और इग्नोर न करें उनको, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए नियम बताए जा रहे हैं, तो हम सही रहेंगे अगर हमने उनका पालन किया।
1: जी
0: तो
1: शुभदा जी, जैसा कि हम गृहिणियां हैं,
0: जी,
1: तो हम गृहिणियां ऐसे क्या कदम उठा सकती हैं जिससे ये पर्यावरण की सुरक्षा की ओर हम अपने कदम बढ़ा सकती हैं?
0: जी
1: ऐसे छोटे छोटे क्या उपाय हम अपना सकती हैं?
0: ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पर्यावरण भी शुद्ध रहे
1: जी,
0: और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहे, इसके लिए हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। मतलब आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैंड फूड है, जैसे डिब्बा बंद खाना, कहाँ से कोई खाना पहुंचाने वाली कंपनियां हैं उनसे हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं, हमको पता नहीं होता कि वो कब बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। घर का शुद्ध ताजा सात्विक भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें
1: जी।
0: गलत आदतों को छोड़ें, गलत आदतों से मेरा मतलब आजकल छोटी उम्र से ही बच्चे गुटखा वगैरह की आदत लग जाती है, उनसे हम दूर रहें, वो हमारे स्वास्थ्य। आजकल आप बहुत देख रहे होंगे कि मुंह के कैंसर से बहुत लोग परेशान है कम उम्र में भी, क्यों? क्योंकि उनको मुंह में गुटखा दबा के रखने की आदत होती है जो उनको जॉ कैंसर से परेशान कर देता है। तो इतनी चारों ओर हमारे हमको सजग करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, वहां भी आपको ये बताया जाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, लेकिन हम चीजों की ओर ध्यान देंगे तब हम कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं वो आपके भले के लिए हैं, तो उनका पालन करें और स्वस्थ। बाढ़ न आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: हाँ।
0: तो बाढ़ न आए, वैसे तो ये बहुत बड़ी भीषण विभीषिका है, लेकिन हम बाढ़ को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम हम आर्टिकल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार तो हम जरूर कर सकते हैं कि इस मानसून में कम से कम हम इतने सावधान हो जाएं, या निगम या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे एहतियात बरते जाएं जिनकी वजह से शहरों में ये विभीषिका आए ही ना।
1: जी, जैसा कि शुभदा जी, ये जो कहीं अत्यधिक वर्षा है, कहीं कम वर्षा है, कहीं बहुत अधिक गर्मी है और कहीं बहुत अधिक ठंडी है, तो ये मौसम असंतुलन हमारे पर्यावरण असंतुलन के कारण है। तो ऐसे क्या प्रयास है जो हम गृहिणियां करें तो कुछ अपना योगदान दे सके पर्यावरण संतुलन के लिए?
0: जी, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। गृहिणी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं
1: जी।
0: हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकते हैं ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन आज की ज्वलंत समस्या है
1: जी।
0: और उसके लिए हमारी पिछली पीढ़ी ने जो भी उनसे गलतियां हुई कह लीजिए, जिसकी वजह से पर्यावरण का असंतुलन हुआ, और हम उसमें कम से कम उसमें हम ऐड ना करें, उसको हम कम करें। जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, और हमेशा हमारे पास सरकार की तरफ से, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हमको सूचनाएं मिलती रहती हैं
1: जी,
0: कि वन टाइम यूज वाला प्लास्टिक इस्तेमाल न करें
1: जी।
0: जो परमानेंट प्लास्टिक है, परमानेंट चीजें हैं, जैसे फर्नीचर है प्लास्टिक का
1: जी,
0: वो उतना नुकसान देगी नहीं है, क्योंकि उस प्लास्टिक को हम सालों साल चला सकते हैं
1: जी।
0: आप लेकिन ये जो पन्निया, पैकेट, ये पाउचेस, ये सब जो है ना, ये वन टाइम यूज के, क्या करते हैं हम, चिप्स का पैकेट खरीदा
1: जी
0: और उसको फाड़ा, उसका छोटा टुकड़ा जो ऊपर से निकला उसको तो हमने चिप्स खाने के पहले ही फेंक दिया। फिर हम खाते गए और उसमें से हम बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, चल रहे हैं, जो भी हैं, तो जैसे ही चिप्स खत्म हुए तो हमने उसको झटका और उसको भी फेंक दिया। तो इस तरह हमारा जनसंख्या एक्सप्लोजन भी हमारे यहाँ है, और सारे लोग अगर हम प्लास्टिक को इस तरह से रास्ते पे नाली में फेंकेंगे, वो आफ्टरऑल हवा से उड़ के वो नाली में जाना है, तो नाली जाम होनी है तो नाली बहनी नहीं है तो पानी बारिश का बाढ़ के रूप में आना है। तो इन सब चीजों से हम बचें। वन टाइम लेकिन प्लास्टिक का यूज बंद। टिफिन बॉक्स ठीक है
1: जी,
0: लेकिन पन्नी में खाना ले जाना गलत है
1: जी।
0: पीने के पानी की बॉटल इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि वो वन टाइम यूज की है। लोग हालांकि कहते हैं कि इसको क्रश करके फेंकिए, लेकिन कौन फेंकता है वो, उस बॉटल को हम दोबारा यूज करते हैं, कभी पानी के लिए, कभी तेल के लिए, कभी पेट्रोल के लिए। तो ये जो है ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है।

0: क्योंकि आपने पेट्रोल तो भर के लाया, उसे उसको आपने गाड़ी में डाला और उस बोतल को वहीं फेंक दिया, तो आपने पर्यावरण असंतुलन में अपनी ओर से भागीदारी निभाई, जो हमें नहीं करना है। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भागीदारी निभानी है, उस असंतुलन को और नहीं बढ़ाना है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कचरा जो डिकम्पोजेबल नहीं है, जो खराब नहीं होता, जो सड़ता नहीं, उसको हमें सड़क पे ओपन में बाहर नहीं फेंकना है। आजकल मैंने पहले भी कहा कि कचरे की गाड़ी आती है, उनको दीजिए, वो सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग लेते हैं। रास्ते में जगह जगह हरे और नीले बॉक्सेस लगे हैं जिनमें हमको गीला और सूखा कचरा डालना है, हम उस बात का ध्यान रखें। मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि जो कचरे के डिब्बे लगे रहते हैं, घर से ही लोग उसको बैग को ऐसा फेंकते हैं, जो वो डब्बे में गिरा के नहीं, उसकी परवाह भी नहीं करते। तो ये जो हमारी कह लीजिए हम अति कर रहे हैं प्रकृति के साथ, वो हमको पे बैक कर रही है भाई। प्रकृति तो अपने ऊपर किए गए गलत कामों का जवाब देगी ही ना, उसको भी अपना संतुलन बनाए रखना है। तो आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप बुरे काम करेंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जुहू बीच पे समुद्र है, जहाँ जो समुद्र का किनारा है, लोग टूरिस्ट प्लेस है, लोग देश भर से घूमने जुहू बीच देखने के लिए जाते हैं, वहाँ समुद्र अपनी लहरों के साथ सारा प्लास्टिक और सारा कचरा लाके किनारे पे डाल देता है, और वो किनारा जो खूबसूरती देखने के लिए हम जाते हैं, वो पूरा कचरे से भरा पड़ा है। तो ये सावधानी जब तक हम नहीं बरतेंगे, तब तक हम प्रकृति के साथ अन्याय करते रहेंगे और प्रकृति हमको उसकी सजा देती रहेगी। तो हमारा पूरा फोकस सजगता और सतर्कता प्रकृति को बचाने के लिए होनी चाहिए। भाई हम प्रकृति को अपनी माँ कहते हैं और उस माँ का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक का यूसेज कम करना चाहिए, कचरा फेंकते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको देखिए एक दिन स्वच्छता पखवाड़ा या एक हफ्ते स्वच्छता वीक बनाने से स्वच्छता नहीं आती, या प्राइम मिनिस्टर के कहने से स्वच्छ भारत अभियान में एक दिन गाड़ी आ गई, वैसा नहीं होता। ये हमारे असल में वो सब योजनाएं इसलिए चलाई जाती है कि हमें आदत डले,
1: हमें जागरूक करने के लिए,
0: हमें जागरूक करने और इसके लिए कि वो हमारे हमारी आदत में शुमार हो। लेकिन हम एक दिन मनाते हैं और खुश हो जाते हैं, उसके बाद हम फिर से फ्री हो जाते हैं अपने गुटके के पाउच और चिप्स के पाउच और कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंकने के लिए। तो ये गलत है, इसकी सजगता जब तक हमें नहीं आएगी। तो माओ का आपने पूछा था ना कि माओ की या गृहिणियों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली कौम को ये सिखाए, सजग करे, सजगता सिखाए कि बेटा हमने तो कर ली गलती जो करनी थी, लेकिन आप सजग बनो ताकि हम आपके लिए जो विरासत छोड़ जाएं वो आपको अच्छी तरह मिले।
1: हम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं पौधे लगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, और घरों के आसपास साफ सफाई के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम बच्चों को सिखा सकते।
0: फिर मैं कहती हूँ कि वीकेंड या कोई एक दिन आइडेंटिफाई करके सफाई करवाना नहीं, ये हमारी रोज की आदत होनी चाहिए। जैसे हम जब छोटे थे, जब हम स्कूलों में जाते थे, तो हमारे यहाँ हम रोज, मतलब हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं था, तो हम अपनी कुर्सी टेबल अपना कपड़ा लेके जाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम, तो हम बकायदा अपने कुर्सी टेबल साफ कर, देखिए आखिर हमको सफाई में बैठना है। नीचे से झाड़ू एक दीदी आती थी, वो लगा के जाती थी, लेकिन जो टेबल कुर्सी है उसको बकायदा हम साफ करके जाते थे कि चूंकि हमको बैठना है तो हम साफ करेंगे। ब्लैक बोर्ड साफ करना, ये सब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब आजकल क्या हो गया है कि हो सकता है प्राइवेट स्कूलों की भरमार के कारण, लेकिन स्कूलों में बच्चों से काम कराना अपराध हो गया है।
1: जी,
0: आपने बच्चों को बोला जरा सा कि बेटा साफ करके बैठो तो माता पिता आ जाते हैं पीटीएम में शिकायत करने की।
1: जी,
0: तो ये इसको हम शिक्षा की तरह ले, इसको हम अच्छे संस्कार डल रहे हैं ऐसा समझ के ले, उसको फीस दे रहे हैं इसलिए सफाई क्यों करेगा, ये भाव से ना ले।
1: जी,
0: प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे वैसा बर्ताव वो भी हमारे साथ करेगी। ये इतनी दुर्घटनाएं, इतनी नैसर्गिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जो अन्याय कर रखे हैं वो हमको वापस मिल रहे हैं सूद के साथ।
1: जी,
0: तो इस वजह से ये जो असंतुलन हम कह रहे हैं ना, ये इस वजह से होता है। आप देखेंगे कि नालियों में कितनी गाद जमा हो जाती है, फिर आके वो एक दिन किसी दिन कोई कर्मचारी निकालता है और वो सड़क पे रख के चले जाते हैं, क्योंकि उठाना उनका काम नहीं, उनका कहना है ये उठाना हमारा काम नहीं, हमारा काम नाली से निकालना है।
1: जी,
0: तो उस वजह से वो गाद वापस नाली में चली जाती है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नहीं, सफाई के प्रति फोकस्ड और समर्पित होना चाहिए।
1: जी,
0: तब हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यावरण और बाढ़ रहित मानसून की कल्पना करते
1: हैं। शुभदा जी, आप हमारे एक महिलाओं के कार्यक्रम में आई हुई हैं, तो आप हमारी सुनने वाली बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहती हूँ कि सजग रहें, सतर्क रहें, खुद भी प्रकृति को बचाने के प्रति समर्पित तरीके से काम करते रहें, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी तरफ सजग करें, सतर्क करें, और उनको भी इसके लिए प्रेरित करें कि प्रकृति को बचाना हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, और वो भगवान की तरह उसे पूजें और भगवान की तरह उसका संरक्षण और ध्यान करें।
1: जी शुभदा जी।

0: आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे और हमारी बहनों से इतनी सारी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, प्रकृति को बचाइए और बच्चों को संस्कारित करिए। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया इस विषय पर बात करने के लिए। मेरी सभी महिला श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने सुना। आप सुरक्षित रहिए, प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहिए, बच्चों को भी संवेदनशील बनाइए और स्टे हैप्पी। नमस्कार।
0: अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़, इस विषय पर अभी हम बातें कर रहे थे पर्यावरणविद श्रीमती शुभदा जुगलेकर जी से। हम उम्मीद करते हैं बहनों की ये भेंट वार्ता आपको जरूर पसंद आई होगी। और आइए बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विश्व स्तनपान दिवस पर अपने विचार साझा कर रही हैं प्रीति ध्रुव।
2: प्रिय श्रोता बहनों, मैं आपकी सखी प्रीति ध्रुव। विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और इसके बारे में हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं हम स्तनपान का क्या महत्व है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इससे शिशु को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और संक्रमण का खतरा कम रहता है। पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए पर्याप्त माना जाता है, जो कि शिशु के लिए जीवनप्रद लाभप्रद है। माँ और शिशु के लिए कैसे यह लाभदायक है, आइए जानते हैं। स्तनपान से शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। वहीं माँ में प्रसव के बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, स्तन एवं अंडाशय के कैंसर का जोखिम कम होने तथा माँ शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है माताओं को स्तनपान के बारे में जागरूकता लाना, शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना, माताओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें लाभप्रद जीवन के बारे में बताना। वही सतत विकास लक्ष्य 2 जो कि शून्य भूख और सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य कल्याण की प्राप्ति में सहयोग देता है। स्तनपान सप्ताह 2026 का थीम है जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान, जो प्रभावी है उसे मजबूत बनाए रखें। स्तनपान कराने के संबंध में विभिन्न चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे आज की जानकारी की कमी, सामाजिक मिथक, कार्यस्थलों पर उचित सुविधाओं का अभाव तथा शिशु आहार के बढ़ते प्रचार के कारण कई माताएं स्तनपान नहीं करा पाती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए परिवार, समाज और सरकार सभी का सहयोग आवश्यक है। वहीं छत्तीसगढ़ में माँ कार्यक्रम जो कि शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य सुधार में जागरूकता लाती है, वजन त्यौहार जो कि पोषण और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, समेकित बाल विकास योजना जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जाती है और स्तनपान को बढ़ावा दिया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि एक स्वस्थ समाज की शुरुआत एक स्वस्थ बच्चे से होती है, इसलिए हर माँ को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों में जागरूकता फैलाना और जरूरी मदद देना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा ही एक मजबूत देश की नींव होती है। धन्यवाद।
0: आइए बहनों, चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गीत लिया हमने फिल्म इजाजत से, स्वर दिया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम महिला सभा अभी हम सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आज रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनेगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। शाम 7:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी कार्यक्रम रजनीगंधा की। रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 6:30 पर सुनेगा खेती की बात। सामूहिक सुझाव होगा शलजम की खेती। वाचन स्वर होंगे नंद कुमार यादव के। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस विषय पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान सुनेगा प्रातः 6:45 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई, जिसमें हम सुनेंगे ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, पद्मलोचन जायसवाल और साथियों के गाए गीतों को।

कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का आनंद लीजिएगा। सुबह 10 बजे प्रस्तुति होगी सुनील चिपड़े की। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनिएगा सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे सुनिएगा सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम युवा जगत, जिसमें आज की बात होगी अपने स्वास्थ्य की देखभाल पर और होगा क्रम युवा पसंद सवाल जवाब और स्तनपान सप्ताह पर प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की।

0: शाम 7:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में सुनिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल सुरक्षा विषय पर चर्चा। साथ ही आकाशवाणी गांव में के तहत हम सुनेंगे ग्राम सिंगारबाड़ी घुटकू विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर के स्थल धन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग एवं संपादन होगा महेंद्र कुमार साहू का, प्रस्तुति एवं संयोजक डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन होंगी। रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वां जयंती के मौका मा आज रायपुर मा पवित्र माटी और जल युक्त कलश के वितरण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साहू नवा रायपुर मा पत्रकार वार्ता मा कही ने कि जल्दी छत्तीसगढ़ मा हॉकी लीग के आयोजन करे जाही और प्रदेश मा 1-7 अगस्त तक विश्व स्तन पान सप्ताह मनाए जावत है। अब समाचार विस्तार ले। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वां जयंती के मौका मा राखे के प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी ले लाने गए पवित्र माटी और जल युक्त कलश के वितरण के कार्यक्रम आज रायपुर में आयोजित करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राखे गए ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। ये मौका में मुख्यमंत्री संत रविदास जी के नाम ले राज्य अलंकरण दे जाए के संगे संग अवैया बछर माघी पूर्णिमा उखर जयंती में सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा करी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुरु रविदास जी के समता और समरसता के संदेश ला जन जन तक पहुंचाए बर तैयार करेगे विशेष रथ ला रवाना करी। उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव कहने की राज्य सरकार खेल खिलाड़ी और खेल अधोसंरचना के विकास पर सरलक काम करत है। आज नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत श्री साव खेल और युवा कल्याण विभाग के 2.5 बच्चर की उपलब्धि के बारे में बताइन। उमन बताइन की नवा रायपुर और जसपुर में तीरंदाजी अकादमी खोले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन करे जाही। उमन बताइने की खेल ला बढ़ावा देबर राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के घलो आयोजन करे जाही। श्री साहू बताइने की मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत राज्य सरकार डहर ले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपया के बजट के प्रावधान करे गए है। एकर तहत एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, फीडर सेंटर, एथलीट वेलफेयर, उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण जैसन आने आने पहलू

0: कार्य योजना तैयार करे जाही। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, जम्मू विभाग के विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और कार्यालय प्रमुख मला चिट्ठी जारी करके अधिकारी कर्मचारी मन के कार्य पटल ला हर 3 बच्छर में परिवर्तन करे बर कहे हे। चिट्ठी में कहे कि लंबा बेरा ले एक जगह में या एक काम में काम करत कर्मचारी मन के जगह में बेरा बेरा में आने आने कर्मचारी मन ला आने आने काम मन में सहभागिता और प्रशिक्षण के मौका देना चाहिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन बर रायपुर के निमोरा स्थित ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान में 3 अगस्त ले कार्यशाला के आयोजन करे जावत है। 5 अगस्त तक चलिया ये कार्यशाला में राज्य के जम्मो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मन भाग लेवत है। कार्यशाला ला संबोधित करत विकसित भारत जी रामजी योजना के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा कहिने कि विकसित भारत के लक्ष्य ला साकार करे में पंचायत प्रतिनिधि मन के भूमिका विशेष हवे। श्री सिन्हा बताइने कि अधिनियम के तहत हरेक पात्र ग्रामीण परिवार मन ला हर बच्छर 125 दिन रोजगार के गारंटी देगी है। मुंगेली जिला में पुलिस तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO अमरेश सिंह ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दे है। ये कार्यवाही जिला के जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में 1 अगस्त के रतिया हुए सड़क हादसा में 2 लोगों के मौत के बाद करे गए है। हादसा के बाद वहां खड़े लोगन मन बताए रही से कि जौन कार ले ये हादसा हुईस ओ मां CMO लिखे रहीस, यही आधार में पुलिस ये कार्यवाही करे है। प्रदेश भर के पटवारी मन पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करे के मांग ला लेके काली सोमवार के हड़ताल में रहीन। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान में प्रदेश के जम्मू जिला मुख्यालय में पटवारी मन अपन लंबित मांग ला लेके प्रदर्शन करत कलेक्टर मन ला मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपिन। अपन 2 सूत्री मांग ला लेके पटवारी मन राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में 1 दिन के प्रदर्शन करिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। प्रदेश में 1 ले 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जावत है। इकर तहत स्वास्थ्य विभाग डहर ले अस्पताल सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मन में समुदाय स्तर में जागरूकता गतिविधि के आयोजन होवत है। अभियान के माध्यम ले गर्भवती माई लोगिन और माता मल्ला लैका मल्ला दूध पियाए के और उखर वैज्ञानिक फायदा के जानकारी दे जावत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत चलत प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट महाविद्यालय मन में चालू शैक्षणिक सत्र में BSc कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पहली चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग के काम काली 5 अगस्त ले शुरू होही, जौनहा 14 अगस्त तक चलही। पहली चरण के काउंसलिंग में 18 अगस्त के ऑनलाइन पंजीयन करे अभ्यर्थी मन ला PAT परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार में प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय में सीट दे जाही। उन्हें 20 से 22 अगस्त तक रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में दस्तावेज परीक्षण होगी। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती बछर 2026-27 के पात्र अभ्यर्थी मला रायपुर स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र डहर ले निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 10 अगस्त तक लोक भवन के तीर स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आवेदन कर सकत है। अभ्यर्थी मन अपन आवेदन ईमेल के माध्यम ले घलो निश्चित बेरा तक भेज सकत है। खबर के मुताबिक जुलाई महीना में भारतीय थल सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CE के परिणाम घोषित करे रहीस। ये परीक्षा में रायपुर जिला के 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा पर पात्र घोषित हुए है। नेपाल में 26 ले 31 जुलाई तक राखे गए 11वां अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जांजगीर चांपा जिला के जय जयपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य प्रभु दुबे एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिता में जिला के मौली शर्मा, अंजलि कश्यप और फातिमा बख्शी रजत

0: दगजी तीन उन्हें कराटे प्रतियोगिता में ओम साहू हा स्वर्ण पदक और स्पर्श पांडे हा फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हे। अंडर 19 वर्ग में रखे गए ये जम्मो प्रतियोगिता में सुघर प्रदर्शन पर जांजगीर और शक्ति जिला के खिलाड़ी मन के लहुटे में क्षेत्रवासी मन हा जोरदार स्वागत करी। सावन के पहली सोमवार के काली धमतरी स्थित महानदी के चित्रोत्पला घाट में पहली घाव महानदी गंगा आरती के आयोजन करेगी। ये दौरान रुद्री घाट शंखनाद वैदिक मंत्र और घंटी के आवाज ले गूंज उठी। ये मौका में संस्कृति और पर्यटन विभाग 20 करोड़ रुपया की लागत ले प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के कायाकल्प के संकल्प ली। अब थोड़की समाचार सार में मुख्यमंत्री विष्णु साय की अगुवाई में काली 5 अगस्त के मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला के गौरेला स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर चना डोंगरी है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल करे है। रायपुर के विधानसभा रद्दा में आज बिहनिया स्कूल बस के चपेट में आए ले 2 बच्चर के 1 लड़का के मौत हो गए। घटना के बाद गुस्साए परिवार और क्षेत्रवासी मन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करत विधानसभा थाना के घेराव करी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर रहले काली 5 अगस्त के बिहनिया 11 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र भोपाल और राज्य उड़नदस्ता दल रायपुर और बलरामपुर वन मंडल के सामलाट टीम हाथी दांत तस्करी के आरोप में 3 लोगन मेला गिरफ्तार करे है। 31 ले 3 हाथी के दांत बरामद करे गए है। बलरामपुर रामानुजगंज के स्टेट बैंक रोड स्थित एक ठिन कपड़ा दुकान में आज बिहनी आग लगी। लाखों रुपया के सामान जल के राख हो गए। आग लगे के कारण के जांच करे जावा थे। उन्हें जगदलपुर के अनुपमा चौक स्थित एक बुक डिपो में पाछू रतिया लगे आगी में काबू पा ले गए। ये आगजनी में लाखों रुपया के सामान जल के खाक हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर संत शिरोमणि रविदास जी के 650वां जयंती के मौका में आज रायपुर में पवित्र माटी और जल युक्त कलश के वितरण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव नवा रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहने कि जल्दी छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन करे जाही और प्रदेश में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जावत है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूदी। महसोल सीतामणि बिहार से मुसरत जहां नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान और उत्तम जमदाड़े। भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे,

दीप अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी थांदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं कुणाल गांजावाला की और शान की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत है और फिल्म का नाम है बर्दाश्त।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना कुणाल गांजावाला और शान की आवाजों में बर्दाश्त फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है आरडी बर्मन। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु लाडी, शालिनी, तिवानशी वाणी और आरबी खेरा। पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू। दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमराज और दिव्या भारती। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जयेंद्र, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवारम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबेरॉय। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह और इनके साथ है अनुपम और राकेश कुमार। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत।

रिवार्ड, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना और वली भाई, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफरा और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरीभाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनुलाल रजक और मुरली छत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, बेंगलुरु जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सोनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश सुमित और ध्वनि गवाणकर, जलंधर से मीना कौर और मन्नत नूर, यवतमाड़ से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोबाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं मेरा साया फिल्म का गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, राजा मेहदी अली खान ने इस गीत को लिखा है और संगीत है मदन मोहन का।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत इस अंक का सुनना चाहते हैं नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू, कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सांदूल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहदी अली खान के इसी गीत गीतकार के और फिल्म का नाम था मेरा साया। और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में बेरा के गोठ में हम सुनेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल सुरक्षा विषय पर। साथ ही आकाशवाणी गांव में के तहत हम सुनेंगे ग्राम सिंगारबाड़ी घुटकू विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर की स्थल ध्वन्यांकर पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग एवं संपादन होगा महेंद्र कुमार साहू का और प्रस्तुति एवं संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मिनट हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक

0: स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी अब लंबे समय तक एक ही स्थान पर काम नहीं कर सकेंगे, हर 3 साल में कार्यभार में होगा बदलाव। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज रायपुर में किया गया कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश में जल्द ही हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की घोषणा। और प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के सभी विभागों में अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर और एक ही तरह का कार्य नहीं कर सकेगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और कार्यालय प्रमुख को पत्र जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यपटल का हर 3 वर्ष में परिवर्तन करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि लंबे समय से एक ही स्थान या एक ही कार्यपटल पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थान पर समय समय पर अन्य कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों में सहभागिता और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित विशेष समिति ने अब आम नागरिक और विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। समिति ने शासकीय, गैर शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से 15 अक्टूबर तक अपने विचार और अभ्यावेदन जमा करने की अपील की है। गौरतलब है कि राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन और सुझाव के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी की आवश्यकता और उसकी रूपरेखा का अध्ययन कर रही है। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जलयुक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम आज रायपुर में आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास जी के नाम से राज्य अलंकरण दिए जाने के साथ ही अगले वर्ष माघ पूर्णिमा पर उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की।
6: माघ का जो पूर्णिमा वो संत रविदास जी की जयंती होती है, तो चूंकि 650वीं जयंती समारोह चल रहा है तो 2027 माघ पूर्णिमा को पूरे प्रदेश में छुट्टी होगी और उस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी वर्जित रहेगा। उसी तरह से उनके नाम पर एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रारंभ करेंगे।
5: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी के समता और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किए गए विशेष रथों को रवाना किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्रिमंडल के सदस्य और संत मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बताया है कि राज्य के 6 नए जिलों में जिला खेल अधिकारियों के पद पर स्वीकृति के बाद जल्द ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। आज नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री साव ने

0: खेल और युवा कल्याण विभाग के 2.5 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया।
1: खेल के लिए एक उपलब्धि आज हासिल हुई है। राज्य में जो 6 नवीन जिले बने थे, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, शक्ति, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, इन 6 जिलों में जिला खेल अधिकारी के पद की स्वीकृति आज ही जारी हुई है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं।
0: उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि नवा रायपुर और जशपुर में तीरंदाजी अकादमी खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। मुंगेली जिले में पुलिस ने तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये कार्रवाई जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में 1 अगस्त की देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद की गई है। हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जिस कार से यह हादसा हुआ उस पर CMO लिखा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र भोपाल और राज्य उड़नदस्ता दल रायपुर तथा बलरामपुर वनमंडल की संयुक्त टीम ने हाथीदांत तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 हाथीदांत बरामद किए गए हैं। आरोपियों में 2 छत्तीसगढ़ और 1 झारखंड का रहने वाला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज से अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आगामी 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
2: आज से प्रदेश में वर्षा का गतिविधि बढ़ने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा आगामी 3-4 दिन तक रहने की संभावना है। इसके अलावा भी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में भी और गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर और इससे लगे हुए क्षेत्र में भी 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसकी वजह से हमने आगामी 3 दिन तक एक क्षेत्र में हमने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और मध्य रूप से वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल में 26 से 31 जुलाई तक आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य प्रभु दुबे ने एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रतियोगिता में जिले की ही मौली शर्मा, अंजलि कश्यप और फातिमा बख्शी ने रजत पदक जीता। वहीं कराटे प्रतियोगिता में ओम साहू ने स्वर्ण पदक और स्पर्श पांडे ने फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के पात्र अभ्यर्थियों को रायपुर स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा निशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 10 अगस्त तक लोक भवन के पास स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन ईमेल के माध्यम से भी निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि जुलाई माह में भारतीय थल सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CEA के परिणाम घोषित कर दिए थे। सावन के पहले सोमवार को कल धमतरी स्थित महानदी के चित्रोत्पला तट पर पहली बार महानदी गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान रुद्री, घाट, शंखनाद, वैदिक मंत्रों और घंटियों की आवाज से गूंज उठा। संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर का कायाकल्प किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 5 अगस्त को मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में BSc कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया कल 5 अगस्त से शुरू होगी, जो 14 अगस्त तक चलेगी। गौरेला, पिंडरा, मारवाही जिले के गौरेला स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर चना डोंगरी ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद और उनकी विशेषज्ञ टीम ने जिला विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा का भ्रमण कर यहां संचालित वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। रायपुर के विधानसभा मार्ग पर

0: आज सुबह स्कूल बस की चपेट में आने से 2 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रवासियों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा थाने का घेराव किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और महासमुंद जिले के बरौंदा बाजार स्थित एक बाल सुधार गृह से कल 8 अपचारी बालक फरार हो गए। इन बालकों पर चोरी और गांजा तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी अब लंबे समय तक एक स्थान पर काम नहीं कर सकेंगे। हर 3 साल में कार्यभार में होगा बदलाव। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आज रायपुर में किया गया कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश में जल्द ही हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की घोषणा और प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का इस अंक का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं गांव जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी, साहिल, भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तान्या नारंग, बुल्ढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजवत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद, अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजम उल हुदा, SM जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और रहीम मुन्ना, तखतपुर से हमारे साथी है मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडु रंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शायना और मैंडी शर्मा, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं अनुराधा पौड़वाल और सुरेश वाड़कर की आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाड़कर की आवाज़ों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुचा सिंह पाठक, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति निधि, निखिल यश, प्रयाण शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से हमारे साथी हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन नाजिया, इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर अल्तमश, अलकमा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, लोतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। आइए आप सब मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं अलका याग्निक और हरिहरण की आवाजों में दिलीप सेन समीर सेन के संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे लिखा है नवाब आरजू ने और फिल्म का नाम है हकीकत।

कार्यक्रम ईमेल करें। गीत सुने का अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवाणकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा, जयवीर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया अनौसर रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल, पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक सीमा साहू, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला विशाल नाहवकर, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्र देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहानसी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष मयंक जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाड़ से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु अर्णवानंद और सत्यमानंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजेश जाधव, प्रशांत, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वद, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन। आइए आप सबकी मिली जुली फरमाइश पर सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत से सजा हुआ समीर का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। आवाजें अनुराधा पौड़वाल और कुमार सानू की।

कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश। भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति, टिकू और मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और एसके। सहारनपुर से आशु। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहान अब्बासी और दानिश गुनौरी। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर। मोन्ताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला और ओम कुमार सुरड़कर। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं यलगार फिल्म का गीत, उदित नारायण और सपना की आवाजों में। सुदर्शन फाकिर ने इस गीत को लिखा है और चन्ने सिंह ने इस गीत को संगीत दिया है।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

उदित नारायण और सपना की आवाजों में यलगार फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: राम राम पूजा।
1: राम राम लालजी भैया, आओ संगे संग कार्यक्रम सुनैया हमर जम्मू संगी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम। पूजा बेरा है किसान वाणी के, प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: मैं भारत के किसान हम
1: किसान हम
0: किसान हम
1: किसान हम।
2: पूजा आज हमर क्रम होते हेलो किसान वाणी के, जेकर आज के विषय है वर्षा जल का संरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन। जेकर विशेषज्ञ है डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी, प्राध्यापक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुद धमतरी। और गोट बात करे है पूजा चंद्रवंशी हर, प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।

बेरहे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के जेमा हमर किसान भाई मन फोन करके अपन समस्या के समाधान पा सकत है। त आज के हेलो किसान वाणी में आज की विषय है वर्षा जल का संरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन। ये विषय में जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी, आपन प्राध्यापक हो सस्य विज्ञान मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुद्धम तरीमा। और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे, संचालन करते है आपके कंप्यूटर संघ की पूजा चंद्रवंशी है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम, स्वागत है आपन के हमारे कार्यक्रम में।

0: जय जोहार आप सभी को।
1: जी डॉक्टर साहब, हमर किसान भाई है तेकर मन के फोन आवत है, तो फोन ला पहले ले लेथन, ओकर मन के समस्या ला सुन लेथन।
0: जी
1: हेलो, हेलो किसान वाणी।
2: हेलो वाणी
1: जी भैया, राम राम। कौन बोला था, कहाँ बोला था?
2: राम राम दीदी, राम राम। मैं दानी राम चंद्रवंशी बोला था दीदी, लखनपुर का मरधल।
1: जी भैया कैसे हो आप, मन का बूता चला थे?
2: ये जल प्रबंधन खर्रा खर्रा खाव पीछे टाइप के करना है दीदी, पूछे बोल रहा हूँ।
1: जी भैया, आपके प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ है।
0: जी देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारा बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें हम लोग धान की खेती कर रहे हैं, और इस धान की खेती में किसान भाई सबसे ज्यादा पानी की जरूरत भी पड़ती है, और साथ ही साथ धान की खेती एक ऐसे खेती है कि जिसमें पानी के नुकसान भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो आने वाले समय में पानी के संकट ला देखते हुए ये जरूरी है कि हम धान की खेती में ही पानी के बचत कैसे कर सकते हैं, ओकर बारे में थोड़ा सा सोचन। तो सबसे पहली चीज़ ये

0: जल प्रबंधन खर रख रखाव किसी टाइप के करना है दीदी, पूछे बोल रहा
1: हूँ। जी भैया, आपके प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ है।
2: जी देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारा बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें हम लोग धान की खेती कर रहे हैं, और इस धान की खेती में किसान भाई सबसे ज्यादा पानी की जरूरत भी पड़ती है, और साथ ही साथ धान की खेती एक ऐसे खेती है कि जिसमें पानी के नुकसान भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो आने वाले समय में पानी के संकट ला देखते हुए ये जरूरी है कि हम धान की खेती में ही पानी के बचत कैसे कर सकथन, ओकर बारे में थोड़ा सा सोचन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि धान में हम पानी के इस्तेमाल तभे करन जब ओला जरूरत हो, जेला हम फिर से हम तभे पानी डालन जब वो सूख जाए, और ये प्रकार से क्रम में सूखा फिर गीला फिर सूखा फिर गीला एकर माध्यम से हम पानी दे सकथन। दूसरा, पानी बचाए के सबसे अच्छा तरीका है कि हम पानी ला एक खेत से दूसरा खेत में ना पला के पाइप के माध्यम से या फिर पक्की नाली के माध्यम से ओला सिंचाई करना चाहिए। तीसरा चीज ये है कि एक पद्धति होते धान के जेकर बारे में आप सभी मन ला मालूम है, जेला मन बोलता सीधी बुआई। सीधी बुआई तकनीक के द्वारा भी हम या तो सूखा खेत में या गीला खेत में हम एकर बोनी कर सकथन, और जेमें पानी की आवश्यकता कम पड़ते। तो ये तीन चार तरीका है जेकर माध्यम से हम पानी के बचत धान की खेती में कर सकथन, जैसे कि धान की खेती में मात्र 20-30% जल ही हम उपभोग कर पाथन, जेला हमला बढ़ाए के सोचना चाहिए, कबर 60-70% जल जो है नुकसान हो जाते। तो किसान भाई ये ला बचाना बहुत जरूरी है। जी
1: जी भैया धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी, राम राम दीदी।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: मैं मदनपुर कवर्धा बोला।
1: जी भैया, मदनपुर कवर्धा ले कौन बोला था?
3: मैं श्रवण कुमार साहू बोला था।
1: जी भैया, का बूता चला थे, कैसे हो आप मन?
3: बढ़िया है, हमन तो निमित होता ना आपके चौपाल के।
1: हाँ भैया, हाँ जी जी।
3: खेती बाड़ी काम चला थे, थोड़ा पानी की इंतजार है, पानी फिर अभी नहीं गिरा थे।
1: अच्छा,
3: तो पानी नहीं गिरा है तो खेती बाड़ी काम है रुक जाते।
1: अच्छा,
3: खाद डलाई है कि रोपा लगाना है, एमा थोड़ा से परेशानी होते।
1: तो हमार आज के विषय ही तो वर्षा जल संरक्षण और संवर्धन हरे, तो ये विषय में का प्रश्न करना चाहूँ हमारे विशेषज्ञ ले।
3: हमन का है दीदी, जैसे हमारे वर्षा जल रही, हमारे घर द्वार रही, छत ले पानी है, फालतू बह चले जाते नदी मा, के नदी ले समुद्र मा, वो बेकार हो जाते, और ओखर बाद हमार का होते जल संकट है, गहरा जाते गर्मी के दिन मा। तो वही ला हमन पूछना चाहथन कि हम अपन जल स्तर ला अपन आस पास मा बरकरार रहे, एखर सेती हमला का करना चाहिए, ओखर बचत हमला कैसे टाइप करना चाहिए, ओखर सदुपयोग हो सके।
1: बड़ सुगर आपन प्रश्न करे हो भैया, आपन के प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ।
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है भैया आपन के। देखिए, पानी के जो अनिश्चितता है, वर्षा ऋतु के जो अनिश्चितता है, और साथ ही साथ जो हमारे खेती बाड़ी में धान हो गए या जो अन्य फसल हमन लगातन, उसमें सिंचाई के द्वारा जो जल के हानि होते वो सबसे ज्यादा होते। तो एक लिए दो चीज जरूरी है कि सबसे पहली हम वर्षा जल के संग्रहण करन, और दूसरा खेती बाड़ी में जो हम फसल लगातन वहां पर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सिंचाई के तरीका ला अपना कर हम पानी के बचत कर सकथन। तो सबसे पहली बात आते है कि भाई हम पानी के संग्रहण कैसे करन। तो जैसे हमार घर है, बाड़ी है, या घर में जो हमन छत से जो पानी आते ओला हम बहे के बजाय, बहना इती वती जो व्यर्थ हो जाते ओला बचाए के खातिर हमला ये करना चाहिए कि एक जगह वो पानी गिरे जो छत के पानी है, और वो छत के पानी ला एक जगह गिरे बर वहां पर जहां पर वो गिरते वहां पर हमला गड्ढा बनाना चाहिए। गड्ढा करके मट्टी ला हटा के वहां पर ओकर तरीका है कि भाई सबसे पहली हम उसमें बड़े बड़े बोल्डर डालन, बड़े बोल्डर के बाद गिट्टी, गिट्टी डाले के बाद ईट, और ईट के बाद फिर रेती, ये प्रकार से ओकर स्तर बनाकर फिर से वो गड्ढा ला भर देना चाहिए, ताकि पानी के जो जो वर्षा जो जल है वो वहां पर आए और सीधा वो भूमिगत जल से मिल जाए। तो एक तरीका ये हो गया कि हम घर में ये गड्ढा ला बनान, और साथ ही साथ हम कोशिश करन कि जहां पर हमारे बोरवेल है या ट्यूबवेल है जहां पर पानी गिरते वहां पर भी सेम प्रकार के गड्ढा हमला बनाना चाहिए, ताकि जो जल हमर जो बह के व्यर्थ हो जाते नष्ट हो जाते वो जल हम बचा सकथन, और पुनः हम पृथ्वी में अपन भूमिगत जल में मिला सकथन। तो एकर माध्यम से हम जल के संग्रहण कर सकथन।
3: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो। हाँ मैडम नमस्ते।
1: राम राम भैया।

0: बोला था, कहाँ बोला था?
1: हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोला था, दर्रा पार बांधा बाजार।
0: जी भैया, क्या प्रश्न है आज आपके हमारे विशेषज्ञ लिए?
1: तभी कहा है बारिश के जो पानी है बोला, हम हाँ जल संरक्षण अपन करना है नहीं?
0: हाँ,
1: तो का प्रबंधन बार संरक्षण बार हम का उद्यम कर सकते हैं? हम गांव में हैं, तो गांव में हम कैसे ढंग के ने लोगन मतलब जागरूक कर सकते हैं, ये बारे में पूछना रही।
0: बड़ सुगर प्रश्न है भैया आज आपके, तब हमार विशेषज्ञ आपके प्रश्न के उत्तर दी।
1: हाँ
2: जी साहू भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके, कि दिन ब दिन जो पानी के कमी हमन देखा था हमार खेती बाड़ी में, और साथ ही साथ जो वर्षा की कमी, और वर्षा की कमी के साथ साथ हमार जो भूमिगत जल है ओकरो स्तर लगातार गिरा जात है, तो ये एक चिंता के विषय है, जो कि आने वाले टाइम में यदि हम जागरूक नहीं हो वो तो और विकराल स्थिति ये ले सकते हैं। तो हमार चूंकि खेती बाड़ी में जल की आवश्यकता सर्वाधिक होते, सबसे ज़्यादा हमार खेती बाड़ी में पानी की जरूरत पड़ते, तो ये पानी के प्रबंधन हमला सही प्रकार से करना जरूरी है। तो सबसे पहली किसान भाई हमला जो धान के हमन खेती करा था, धान के खेती में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्रमानुसार हम खेतला सूखा करन फिर गीला करन, मतलब क्रमानुसार सूखा फिर सिंचाई। ये जरूरी नहीं कि लगातार खेत में धान के खेत में पानी भरे रहे, जितना ज्यादा पानी भरे रही उतना ज्यादा वो नुकसान होते है ना। तो हम पानी तभी दें जब बोला जरूरत, बाकी अन्यथा में पानी की इतना ज्यादा जरूरत नहीं कि हम लगातार पानी भर के रखन। दूसरा चीज, धान में एक अच्छा तकनीक है जेकर से आप हो सकते परिचित भी हो, जेला हमन बोलते सीधी बुआई या डायरेक्ट सीडेड राइस जेला हमन बोलथन। दूसरा एक तरीका है एरोबिक राइस, जिसमें खेत में हम थोड़ा सा सुखाए के बाद ही पानी डालथन, तो ये विधि में पानी के जरूरत बहुत कम पड़ते। ये बहुत जरूरी है कि हम रबी फसल में या गर्मी फसल में धान के बजाय कोई अन्य दलहन या तिलहन फसल के इस्तेमाल करें जिसमें पानी की जरूरत कम पड़ते, और साथ ही साथ हम वर्षा जल के संग्रहण जरूर करें, वृक्षारोपण जरूर करें, ताकि हम पानी के जो रिचार्ज है उला हम कर सकें।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक सर जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद भैया। हेलो किसान वाणी।
3: नमस्ते दीदी।
0: राम राम भैया, कौन बोला था?
3: उमेन कुमार निषाद, ग्राम सिंधुघाट मगलोर।
0: तो का प्रश्न है आज हमारे विशेषज्ञ लिए?
3: सर नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: ये लगातार धान के उत्पादन होने से ग्रीन हाउस के जो समस्या हो, तो उसके बारे में जानकारी लेना।
2: जी जी, आप बहुत जागरूक किसान हैं भैया। देखिए, जो धान की लगातार खेती के कारण, ये बिल्कुल सही है कि ज्यादा धान की खेती मतलब ग्रीन हाउस का उत्सर्जन ज्यादा, और खास करके हम लोग कहते हैं कि ज्यादा जल ज्यादा मीथेन, तो ये जो गैसें हैं खास करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका उत्सर्जन धान की खेती के द्वारा होता है, और कहीं ना कहीं ये वायुमंडल में इनका उत्सर्जन ज्यादा होने के कारण हमारे जलवायु परिवर्तन की जो समस्या जो निर्मित हो रही है, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में, ये कहीं ना कहीं हमारे धान की फसल या धान की खेती लगातार खेती के कारण होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम पानी का इस्तेमाल कम करें। जो एक भ्रांति है कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि हम धान की खेती को भी कम पानी में, जिसमें हम 50-60% जो पानी का जो नुकसान होता है उसकी बचत हम कर सकते हैं। वो बचत ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा धान की सीधी बुआई, तो लगातार धान की खेती के कारण इन ग्रीन हाउस गैसों का इस उत्सर्जन है वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है, और ये जैसे कहा जाता है कि ज्यादा जल ज्यादा मीथेन, तो ये बिल्कुल सच है कि हम यदि लगातार ज्यादा पानी भर के खेतों में रखते हैं तो इन गैसों का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसी पद्धति या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिसमें इन गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम धान में पानी तभी दें जब उसे आवश्यकता हो, मतलब जिसे हम क्रम अनुसार सूखा और गीला करके हम पानी दे सकते हैं लगातार खेत में पानी भरने के बजाय, और साथ ही साथ हम गर्मी फसल में या रबी फसल में हम धान की खेती के बजाय अन्य जो दलहनी फसल हैं या तिलहनी फसल हैं उनका प्रयोग करें। तो इन पद्धतियों के द्वारा, पद्धतियों के इस्तेमाल से हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
3: ठीक, जानकारी दे, बहुत
2: धन्यवाद।
0: हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी, नमस्ते बहन जी।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
4: हम बोला था डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला से।
0: जी भैया, क्या प्रश्न है आज?

0: आपके हमारे विशेषज्ञ लिए।
1: भैया मैं पूछना चाहता हूँ जल संरक्षण कैसे किया जाता है।
0: जी भैया आपके प्रश्न के उत्तर दिए हमारे विशेषज्ञ।
2: जी देखिए, जल का संरक्षण से मतलब ये है कि हम जो खेतीबाड़ी में जो जल का नुकसान होता है खेतीबाड़ी में, खास करके हम गलत सिंचाई की पद्धति या गलत सिंचाई की तकनीक के इस्तेमाल से हम पानी को व्यर्थ में जो नुकसान करते हैं उसकी बचत हम कर सकते हैं। और खास करके धान की खेती में पानी का नुकसान सबसे ज्यादा होता है, करीब करीब 60-70% जो जल है वो उसका नुकसान हो जाता है और जिसकी बचत हम कर सकते हैं।
0: जी भैया धन्यवाद। हेलो किसानवाणी।
3: नमस्ते मैडम जी।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: मैं राजेंद्र कुमार दामले गुठियास हूँ सिरमुंदा ले।
0: जी भैया क्या प्रश्न है आज आपके?
3: बारिश है अभी, बारिश के समय में कतका सुग्घर विषय रखे हो आप मन की जल संरक्षण और समर्थन, एक बारे में बताते हो कि हम वर्षक जल ला तो जैसे आते वैसे बहा देते हैं, लेकिन एक संरक्षण कैसे करें, आने वाले समय में संरक्षण करते न सिंचाई करते न, एक बारे में बता देते हो।
0: वर्षा जल संरक्षण करके ओकर सिंचाई में कैसे उपयोग किया जा सकते है, ये पूछना चाहता हूँ आप मन।
3: जी जी जी।
0: हाँ भैया ये प्रश्न के उत्तर दिए हमारे विशेषज्ञ।
2: बहुत सुघर सवाल है किसान भाई आप मन के। देखिए अभी बारिश के मौसम चलत है और हर साल हमन पानी के समस्या ले जूझत रथन, बारिश के सीजन में भी हो गए या अन्य सीजन में भी, तो एकर सबसे ज्यादा पहली सबसे जो जरूरी चीज है कि दो काम हम कर सकथन। पहली हम पानी जो व्यर्थ में जो नुकसान होते खास करके जो बारिश के पानी है और हमार खेत से जो बह के चले जाते हैं तो ओकर संग्रहण करना जरूरी है। संग्रहण मतलब ओकर या तो हम भूमिगत जल से ओला मिला दें जल के रिचार्जिंग टैंक बना के, या तो जो हमार जो पानी जो बहत है ओला हम रोक के रख सकन तालाब के माध्यम से या गड्ढा के माध्यम से। तो सबसे पहली इमें जो जरूरी चीजें हैं हम एक काम ये करन कि जहां जहां हमार पानी जो गिरत है चाहे वो छत के पानी हो या हमार ट्यूबवेल के पानी हो वहां पर वाटर रिचार्ज टैंक हम जरूर बनान। उमें करना का है भैया कि गड्ढा करना रहते जहां पर पानी गिरते चाहे वो ट्यूबवेल के हो या छत के हो, और वो गड्ढा करके उमें हम करीब करीब 7-8 फीट के गड्ढा करे के बाद उमें सबसे पहली बड़े पत्थर ला रखे जाथन जिला हमन बोल्डर कथन, बोल्डर के बाद उमें गिट्टी के स्तर ला डाले जाते और उकर बाद फिर उमें ईटा के टुकड़ा और रेती ला डाल के ओला भरे जाते। एकर करे से का होते कि जो हमार ट्यूबवेल के पानी है या फिर जो बोरवेल के पानी जो गिरत है या छत के पानी जो गिरत है वो सीधा हमार भूमिगत जल से मिल जाते, मतलब ओकर बहे के जो नुकसान होते ओला हम रोक सकथन। दूसरा फसल ला पानी तभी हम देन जब फसल ला ओकर आवश्यकता हो, जेला हमन क्रांति का अवस्था कथन, खेत में अनावश्यक पानी भर के ना रखन ताकि वो बह के नुकसान हो जाए, बल्कि हम पानी तभी दें जब ओला जरूरत हो। धन्यवाद।
0: हेलो किसान वानी।
4: हाँ दीदी मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
4: मैं नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी।
0: जी भैया क्या प्रश्न है आज आपके?
4: हाँ भैया, जैसे मैं जल के संरक्षण करना चाहता था और भूमिगत जल संवर्धन करना चाहता हूँ, तो एक लिए कैसन टाइप के वृक्ष लगा सकता हूँ और वृक्ष लगाए से ये सब समस्या हमार मन के हल हुई था, यही बात ले पूछे बार फोन लगाए हूँ भैया।
2: जी जी भैया।
4: राम राम भैया।
2: राम राम भैया। देखिए ये में सबसे बहुत अच्छा आपके प्रश्न है कि हम वृक्ष लगाकर कैसे हम जल के संरक्षण कर सकथन। ये जो मौसम अभी चला थे हमर बारिश के ये समय बहुत अच्छा रहते हम फलदार वृक्ष या छायादार वृक्ष लगान। एकर फायदा ये है कि हमला फल और छाया तो मिलते ही साथ हमला एक शुद्ध वायु जिला हम कथन ऑक्सीजन हमला देते। और तीसरा जो एकर सबसे बड़े जो फायदा है पेड़ पौधे या वृक्ष के जो जड़ों के माध्यम से जल जो है रिस के भूमिगत जल से मिल जाते, तो ये ना केवल जल के संरक्षण करते बल्कि ये मिट्टी के भी कटावला रोक थे, मिट्टी के कटावला रोक के और साथ ही साथ जो जल के माध्यम से पानी जो मिट्टी ला बहा के ले जाते वहू ला ये रोक थे। तो पौधा पेड़ पौधा के वृक्षारोपण ना केवल हमला शुद्ध वायु ऑक्सीजन दे के काम करते, छाया दे के काम करते, फल दे के काम करते, साथ ही साथ ये हमार पानी के संरक्षण भी करते। तो हमला ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए अपन आसपास हमार खेत में घर के आसपास।
0: जी
4: हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ
0: जी भैया,
4: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। डॉक्टर भैया भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब फोन तो हमर किसान भाई मन के बहुत कनई, जैसे अभी वर्षा जल के बहुत अनिश्चितता हुआ थे, हर बछर जल स्तर कम हो जाते, तो एला कृषि के क्षेत्र पर हम कैसे निपटे जा सकत हन, या जैसे घरेलू उपयोग में भी बहुत

0: पानी के जरूरत पड़थे, तो एला कैसे हम निपटारा करन?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न हवे। अभी वर्तमान में जो पानी की समस्या हर साल देखेला जो मिला थे, चाहे वो वर्षा के अनिश्चितता के रूप में हो या फिर हमारे जो भूमिगत जल के जो स्तर है वो लगातार गिरत जाते हैं, तो ये गंभीर समस्या आने वाले समय में हमला हो सकते। एकल लिए जरूरी है कि हमला जागरूक होना और हर नागरिक ला जागरूक होना ये पाए से जरूरी है, ताकि जो भविष्य में जो पानी की समस्या और विकट विकराल रूप जो ले सकते ओकर से हम निपट सकन। तो हम छोटे छोटे अपन घर से एक प्रयास ला कर सकथन। जैसे हम छोटे छोटे प्रयास का करथन कि भाई हम पानी के इस्तेमाल घर में जो करथन वो बहुत ज्यादा करथन ना, चाहे हम नहाए के पानी हो, कपड़ा धोए के पानी हो, या फिर हम जो टूथब्रश करथन है ना, तो पानी हमार व्यर्थ में नुकसान होते रहते, टैप वाटर के बहे के रूप में हो या फिर हमार जो शावर जल जेला हमने इस्तेमाल करथन। तो ये एक छोटे छोटे तरीका है जेला हमला घर से ही एक शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हमला अपन घर के आसपास बाड़ी में खेत में और जहाँ भी हम काम करथन वहाँ पर ये करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है अभी। और वर्षा जल संरक्षण पर वृक्षारोपण जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही साथ हमारे जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में भी जो सिंचाई जल है उसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करके हम जल के बचत ला कर सकथन और जल उपभोग दक्षता ला हम बढ़ा सकथन।
0: माने आपन कहना चाहते हो कि जतका आवश्यकता है उतके ही पानी के
1: जी
0: उपयोग करन, और व्यर्थ में पानी गंवाबो तो हमर भविष्य पर परेशानी कारण बन जही। जी डॉक्टर साहब, आप बड़ सुघर आपन है जानकारी देहो कि कौन रिकिम ले हम वर्षा जल के संरक्षण करन और कौन रिकिम ले हम पानी के उपयोग करन, चाहे कृषि में हो चाहे अपन घर के घरेलू उपयोग में हो। तो डॉक्टर साहब आपन बहुत सुघर जानकारी देहो और हमर सबो किसान भाई बन के आते कन्फोन ऐसे तेकर सबो प्रश्न के उत्तर देहो और मन के समस्या के समाधान करे हो। जो किसान भाई मन है जेकर समस्या के समाधान आपन हा वर्षा जल का संरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन ये विषय में जानकारी देवत रहे हो। आपन डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी हो, आपन प्राध्यापक हो सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुद धमतरीमा, और कार्यक्रम ला प्रस्तुत करत रहीन है शशि प्रकाश पांडे जी है और संचालन करत है आपन के कंप्यूटर संगी पूजा चंद्रवंशी है। तो डॉक्टर साहब आपन अधिक सुखद जानकारी दे ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर।

संगवारी हो अभी सुनत रहन क्रम हेलो किसान वाणी, जेकर विषय रही से वर्षा जल का संरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन। विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैसी, प्राध्यापक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुद धमतरी, और गोट बात करे रही से पूजा चंद्रवंशी। प्रस्तुत करता रही शशि प्रकाश पांडे।

0: है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
1: भैया अब बेरा हो गए है कृषक प्रश्न मंच के, तो हमार संगी मल्ला अगोरा होते आज के प्रश्न के, तो बता देते हैं आज के प्रश्न, तो संगी हो लिख लो आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है बरसात के जल के संरक्षण करे खातिर टंकी बनाए जाते उमा पानी ला सोखे बर का डाले जाते। प्रश्न एक गाँव फिर दोहरा देता हूँ, बरसात के जल के संरक्षण करे खातिर टंकी बनाए जाते उमा पानी ला सोखे बर का डाले जाते। ये तो रही से आज के प्रश्न, और अब बेरा है पांचवा हफ्ता के प्रश्न और सही उत्तर के। तो पांचवा हफ्ता के प्रश्न रही से मिश्रित मछली पाले बर कौन कौन से मछली ले सकत हन, जेकर सही जवाब है कतला, रोहू और मिर्गल। और भैया हमार सही जवाब भेजिए हमारे

0: संगीमन के नाम बता दे।
1: हाँ पूजा सही जवाब भेजी, यह संगीमन है। ग्राम पंचायत बठेना दुर्गले, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, यश, प्रयान वर्मा, मुरली, खूबचंद वर्मा, गर्रा पार बांधा बाजार ले, गंगाराम साहू, सुलोचना, मानवेंद्र, राकेश साहू मन, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव ले, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, मदनपुर, कवर्धा ले, श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, ग्राम तेंदु भाठा, मगरलोड, धमतरी ले, उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांश, भूपेश और शिवा निषाद मन। सही जवाब भेजे ये खातिर गाढ़ा गाढ़ा बधाई। इसने आज के प्रश्न के सही जवाब भेजे खातिर हमार मेल आईडी है RAI@gmail.com।
0: आओ आप सुनथन गीत जेला स्वर दे है सीमा कौशिक और साथी मन हा।

0: अभी सुनत रहिन गीत जेला स्वर दे रहीन सीमा कौशिक ओकर साथी मन ह।
1: पूजा अब बता देत हन मौसम के जानकारी तो संगी हो, अवैया 24 घंटा में बादल छाए रही और कुछ ही स्थान में गरज चमक के साथ बारिश होए के संभावना है।
0: ये तो रही से आज के मौसम और आज के मंडी भाव ये रिकिम ले है। सामान्य धान 1600 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2460 से 2480 रुपए प्रति क्विंटल और चना 4732 रुपए प्रति क्विंटल। संगी ये रही से किसान वाणी जेकर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: पूजा अब होते जाए के बेरा तब बता देथन काली के कार्यक्रम। काली संध्या चौपाल में क्रम हुई चिट्ठी मिलीस और आज के सलाह में सुनहू फसल चक्र परिवर्तन में श्री अन्न की खेती और जेकर विशेषज्ञ हुई डॉक्टर निशा शर्मा और गीत संगीत तो होबे करी भाई। तो देवा विदा जम्मो संगी मल्ला लाल जी और
0: पूजा चंद्रवंशी के
1: राम राम, राम।

कार्यक्रम किसानवाणी अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब सुनते हैं संसद समीक्षा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2006

26 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मीदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है, ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हाल

0: यह गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। वो आवाज़ कभी हमें बचपन की शरारतें याद दिलाती है, तो कभी पहला पहला प्यार, कभी तन्हाई का एहसास कराती है, तो कभी जिंदगी से भरपूर जोश जगा देती है। भारतीय संगीत जगत में जब भी एक ऐसी जादुई, बेबाक और बहुमुखी प्रतिभा की बात होती है जो बिना किसी औपचारिक शास्त्रीय तालीम के भी सुरों का बादशाह बन गई, तो सबसे पहले नाम जुबा पर आता है आभास कुमार गांगुली का, जिन्हें पूरी दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती है। किशोरदास सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि वो अभिनय, निर्देशन, संगीत निर्देशन, गीत लेखन और निर्माण के क्षेत्र में अपने दम पर एक संस्था थे।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: गीत की वो मस्ती और आवाज का वो जादुई अंदाज, ये सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे। श्रोताओं, किशोरदा सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि वो संगीत का एक पूरा कारवां थे। खंडवा मध्य प्रदेश की गलियों से निकलकर मुंबई की माया नगरी तक का उनका सफर किसी सिनेमैटिक कहानी से कम नहीं है। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग के ऐसी गायकी को जन्म दिया जो आम आदमी के दिल की धड़कन बन गई। उनके गाने सुनकर लगता है कि वो हमसे बातें कर रहे हैं।

किशोरदा की जिंदगी जितनी रंगीन और संगीतमय थी, उतनी ही उनकी शख्सियत भी रंगों से भरी थी। वो एक बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, गीतकार और कच्ची मिट्टी से जुड़े एक सच्चे इंसान थे। जब वो गाते थे तो लगता था कि मंच पर सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि सारे जज्बात जिंदा हो गए हैं। अब सुनिए उनका वो गीत जिसमें दर्द भी है और एक अलग ही सुकून भी।

श्रोताओं, किशोरदा के गीतों की खासियत ये रही कि उन्होंने हर उम्र, हर मूड और हर दौर के लिए गाने गाए। चाहे बच्चों के लिए मस्ती भरे गाने हो, जवानी के रोमांचक गीत हो, या फिर उम्र के ढलने पर जिंदगी का तत्व समझाने वाले गीत, किशोरदा का कोई जवाब नहीं था।

पश्चिमी देशों की गायकी शैली योडलिंग यानी गले से आवाज को तेजी से ऊपर नीचे करना, इस विधा को भारतीय संगीत में लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय किशोर दा को जाता है। वो मंच पर गाते वक्त सिर्फ माइक के सामने खड़े नहीं रहते थे, बल्कि नाचते थे, कलाबाजियां खाते थे और दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे।

श्रोताओं, हर महफिल की जान, हर दिल की धड़कन बनने वाले किशोरदा अंत तक गाते रहे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने हमसे और इस पूरी दुनिया से अलविदा ले लिया। किशोरदा आज हमारे बीच जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन जब भी रेडियो पर उनकी सुरीली और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा लगता है मानो वो यहीं आसपास कहीं मौजूद है। वो एक ऐसे जादूगर थे जिनकी कोई उम्र नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। किशोरदा थे, हैं और हमेशा संगीत के जरिए हमारी धड़कनों में जिंदा रहेंगे। श्रोताओं, आशा है कि आपको आज का रजनीगंधा पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ दीजिए अपने साथी अंशुल गुलकरी को कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

0: कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ देर में हम समाचार अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम

0: करके एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
3: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्र

0: छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए

0: बत्तियां बुझा दो।
1: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।

सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में ये गीत आपने सुना। गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपके लिए विविध भारती पर। और अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

फिर दिल की आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।
1: अरे हाय हाय हाय।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता,

चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन

0: बांसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9-2-11 और पेइंग गेस्ट।

0: जमाना क्या कहेगा।
1: 70 और 80 के दशक में भी बरमंदा के सुमधुर संगीत से सजी अनेक फिल्मों में किशोर दा ने कई सुरीले गीत गाए।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये कि

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सबसे गहरा प्यार वो होता है जब जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो। सबसे सुनहरे प्यार का सफर वो होता है जब कभी जिसे चाहा उसे इजहार ही न किया जाए। जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो कि कोई प्यार करता है उससे। आत्मा से उपजा सबसे पवित्र प्यार वही होता है जब नदी के दो किनारों की तरह एक साथ दूर दूर चलते रहो, निहारते रहो, लेकिन मिलन की तमन्ना ना हो और पता ही ना हो उसे कि कोई बड़ी शिद्दत से करता है प्यार।

0: आकाश में जैसे हरा रंग घुल मिल गया है। नदी लयबद्ध होकर गुनगुना रही है। आज चिनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया महीन महीन आवाज में कुछ नई बोली बोल रही है। पहाड़ों पर जब गिरी बर्फ तो मन उठ चला बर्फीली वादियों में। वादी में गूंजा प्यार का तराना लहरों में जैसे जादुई संगीत है।
1: छलके तेरी आंखों से

तुम्हारी तरह और कोई प्यारा नहीं लगता। तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए। दिल वो नगमा ढूंढता है जो तुम्हारे लिए गाया जा सके। दिल ढूंढता है वो नदी जिस पर प्यार की कश्ती तिरा दो। दिल ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो। दिल ढूंढता है वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते।

0: जहां तक है धरती आसमान का विस्तार, वहां तक प्यार का है आलम। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल है इस रंग को फीका करना। मन के झील में ठहर गया एक चेहरा, तब से पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।

सकता मुझे तुम।

जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए जरा से प्यार के लिए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगु, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान, दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाए रात।
1: आज तुम कितने खुशी हो ये मेरे दिल से तो पूछो। आज तुम

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को

0: प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the